मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है मंगल ध्वनि के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी।

0: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार, महर्षि दयानंद के सत्य पर विचार। वाचक स्वर हैं श्री अरविंद गोस्वामी के।
2: महर्षि दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है कि मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना। सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है, वो सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वो अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वो सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश या लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का

0: असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण कर यदि हम सबसे प्रीतिपूर्वक वर्तें वर्तावें तो संसार का कल्याण होगा। सर्वदा सर्वदा सत्य की विजय और असत्य की पराजय होती है। सबसे परस्पर प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक है। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता है वो जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। यदि मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबका रक्षक और हितैषी है। ईश्वर के अनेक नाम हैं। जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। वो तो सर्वांतर्यामी अजर अमर सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अभय नित्य पवित्र और सृष्टि का करता है। अतः हमें सच्चे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है। सदैव अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, परंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति।
1: अभी आपने सुना आज का विचार कार्यक्रम में महर्षि दयानंद के सत्य पर विचार, वाचक स्वर श्री अरविंद गोस्वामी के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 59 के पहली चौपाई से दोहा संख्या 61 तक का स्वर पाठ। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 26 2-6।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

दिन के 12:10 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम और जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:40 पर हमारे जयपुर केंद्र से।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सौरभ कार्यक्रम में वार्ताकार श्री नवीन कुमार आचार्य की वार्ता भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियां विषय पर। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो का सफरनामा, श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम, वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पादप स्वास्थ्य दिवस, किचन गार्डन और जैविक खेती, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से सौंदर्य निखार, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर, लोक गीतों में प्रकृति का वर्णन।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, नीति आयोग, महासागर, औषधीय पौधे लगाएं।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और रात्रि 8:30 पर। गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम 7:45 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 10 हमारी इसी सभा में, दिन के 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 और रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। रोहिड़ा जैव विविधता का रक्षक विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री रामस्वरूप बिश्नोई।
1: किशन भाई राम राम। राजस्थानी माए एक कहावत है के रोईडे ने रूप दिनो भूल गयो किरतार रे। थे और मैं से जाना कि भगवान ई रोईडे ने इतो फूटरो बनायो, इता चोखा राता केसरिया फूल लगाया, पण बाई ने माई ने खुशबू देवणी भूल गयो भगवान। पण आपनी ओळखाण ई रोईडे सुई है जो को जैव विविधता रो फूटरो रूप है। राजस्थान रो राज्य पुष्प रोहिड़ो जकेरो वनस्पतिक नाम टेकोमेला इंडुलेटा। अब थे होचोला कि इन्हें राज्य पुष्प रो दर्जो क्यों दियो। कहवे है कि जनवरी सु लेर अप्रैल ताई इन माथे केसरिया रंगरा फूल आवे और केसरियो रंग आन बान और शान रो प्रतीक जको आपने त्याग और बलिदान री कहानी कहवे है। राजस्थान री एक फूटरी खूबसूरत ओळखाण रोहिड़े सु मिले। बीरो आकार आपने सामान्य जका दरखत हुए बिसोई हुए खेलड़ी जितो मोटो हुए बदे एर बीरे जको फूल रो आकार है वो घंटियाले जी हुए जहाँ मंदिर रो घंटो हुए भी यही आकृति। और रोहिड़े वृक्ष रो जको केसरिया आभा है बा फूलाऊँ इतनी फूटरी और आच्छादित ओड़ी लागे कि जाने आ मरुभूम फूटरो श्रृंगार कर न खड़ी है। राजस्थान रे मायने वो सूखे अर्ध सूखे क्षेत्र रे मायने पनप्या करे। आप और मैं से जाना कि राजस्थान रे अलावा वो पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र में भी हुआ करे। वो दरखत तापमान और वर्षारी लाठियों लाठी विषमता ने सहन कर ले, तब ते तावड़े में भी हरियो भरियो रहे और हियाड़ेरी ठंडी रात रे मायने भी आपरी पत्तियां ने मजबूती रे सागे राखे। इरीज की छाल है बा त्वचा रोग मेटन ने काम आवे, सागे सागे मोटापो कम करने और कैंसर जेड़े इलाज में भी ई दरखतरी छाल काम आया करे। रोईडे रे बीजा रो उपयोग दवा बनावने में आयुर्वेद रे जानकार बनाया करे और आपने अठेरी जनजातियां इरी पत्तियां खांसी रो इलाज करे। इरे वास्ते आपनो फर्ज बने कि इरे पुष्प कली रगली हांतरी है जने आपनो इरो संरक्षण राखनो घणो जरूरी है। स्याणा लोग कहवे कि वक्त रे सागे रोहिड़े रो रूप बदल गयो, पण बिरी आकृति अर बिरे बदने रो आकार नहीं बदलियो। रोहिड़े री लकड़ी इमारती हुए अर बा दूजी लकड़ियां सु सस्ती सहज टिकाऊ और मजबूत हुया करे, क्योंकि वो आपने अठे आराम सु पनप जाए।

0: रोहिडेरी लकड़ी की नकासी है, बा बहुत ही फूटरी और सांतरी किस्म री होया करे। इरे वास्ते ही जानकार लोग इन्हें राजस्थान रो सागवान केवे। इरे फूलां सुं केसरिया रंजक री प्राप्ति हुए। रोहिडो कृषि वानिकी रो एक खूबसूरत नमूनो है। किसान खेती बाड़ी रे सागे आपरे खेतरी शी माथे इन्हें रो पर आपरी खेतरी शोभा बढ़ा सके है। और हगलाऊं फूटरी बात आ है कि इरी जड़ा माटी रे कटाव ने रोके, मृदा ने बांधे राखे और मृदा संरक्षण रो फूट रो नमूनो पेश करे। वो हवा रे प्रवाह ने बाधित कर मरुस्थलीकरण ने भी रोके। तो आपनो फर्ज है कि जैव विविधता रे फूट रे रूप ने बचाए राखनो है। इरे मथे जद जद भी रोईडे रे फूल फूटरा और चोखा हुए। किसान लोग कहवे कि अच्छी बरसात होने रा सुगुन हुए तो अपनी आ मरु शोभा बरकरार रहे। इरे वास्ते आपन नर्सरी से पौध लावा और बरखारी टेम उगावा और इन्हें पनपावा।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में रोहिडा जैव विविधता का रक्षक विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री रामस्वरूप बिश्नोई। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामिरात् नीदरलैण्ड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामिरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्ड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2017 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्ड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति।

0: यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, हम हमारे कार्यक्रम के हर एक अंक में आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, आपको अच्छी फूड हैबिट्स के बारे में बताते हैं, योगा की बात करते हैं और मिलावटी खाना जो आज हर प्लेट में बाज़ारों में परोसा जा रहा है या फिर होम डिलीवरी के थ्रू आपके घर पर आ रहा है, उससे अवेयर रहने के लिए, उससे सतर्क रहने के लिए हम आपको अपने कार्यक्रम के हर एक एपिसोड में बतलाते हैं। क्योंकि अगर हमारे श्रोता स्वस्थ रहेंगे तो हमें सुनेंगे और स्वयं के साथ साथ पूरे देश की प्रोग्रेस में मददगार बनेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और उससे भी ज़्यादा आवश्यकता आज के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वह है हमारे पेड़ पौधे, जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है और हमारी मदर नेचर हमें पोषित करती है। फूड हमें पेड़ पौधों से मिलता है, ऑक्सीजन प्राणवायु हमें पेड़ पौधों से मिलती है और मृदा के संरक्षण में भी पेड़ पौधे मददगार होते हैं। वायुमंडल को स्वच्छ रखने में, हमारे पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज 12 मई और आज के दिवस को सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्यावरण और पर्यावरण का जो मूल है यानी कि पेड़ पौधे, उनके स्वास्थ्य के

स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वनस्पतियों से जो हमें मिलता है उसके द्वारा भूख कम करना, गरीबी को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पौधों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करना, ये सब कुछ शामिल किए गए हैं। और इस वर्ष भी पौधों के स्वास्थ्य को फूड की उपलब्धता की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन पर बेल डिपेंडेंट होती है, एक परजीवी के रूप में जीती है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको सहारों की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिनको समय समय पर विभिन्न दवाइयों के माध्यम से या फिर उनकी जो न्यूट्रिशन होती है जैसे कि जिंक है, यूरिया है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके पौधों में बीमारियों के प्रसार को कम किया जाता है। ऐसी वनस्पतियाँ जो धरती को बंजर बनाती है या फिर जो उपजाऊ फसल है उसके पोषण में कमी लाती है, उनके लिए भी जो है आमजन को इस दिवस के माध्यम से जागरूक किया जाता है। अगर पेड़ पौधे बचे रहेंगे तभी मानव सभ्यता पृथ्वी पर निवास कर पाएगी। इसी वजह से तो विभिन्न ग्रहों पर आज ऑक्सीजन और जल इनकी खोज की जा रही है। हालांकि इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जहाँ उपलब्ध है यानी कि हमारे जो पृथ्वी ग्रह पर, हमारे प्लैनेट पर जो चीज़ उपलब्ध है यानी कि ऑक्सीजन और पानी, तो हमें इसका जीवन के हर एक पहलू पर संरक्षण करने का विचार करना चाहिए। और अब हम विचार करते हैं कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ट्रैक का, तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: Mega Digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज धूप और लू का असर हमारे थार के मरुस्थल बीकानेर शहर में देखने को मिल रहा है। गर्मी जो है चरम पर है, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि हम कोई भी काम करते तो पसीना ज़्यादा आता है, या फिर हम कोई भी मेहनत का काम है वो करते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर, धूप में काम करने पर चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। पसीना ज़्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। और अगर तेज़ धूप में हम सफ़र कर रहे हैं तो जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाने की वजह से लू से ग्रसित भी हो सकता है। लू के जो सिंपल से लक्षण है, साधारण से लक्षण है, वह सिर्फ एकमात्र यह है कि हमें खाना जो है पचता नहीं है, भूख कम लगती है, सिर्फ पानी पीने की ज़्यादा इच्छा होती है और ऐसा लगता है कि हमें बुखार आ रहा है। हमें ऐसा हमेशा फील होने लगता है कि हमें तेज़ बुखार है या हल्का बुखार है और सर दर्द कंटिन्यू बना हुआ है और बार बार गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो आपके ध्यान में आए, जिसके होंठ बार बार सूख रहे हो, गला सूख रहा हो, बोलने में मुश्किल हो रही हो, इसका मतलब ये है कि वह जो व्यक्ति है वह डिहाइड्रेशन से ग्रसित है, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो अगर कोई व्यक्ति को पानी की कमी हो रही है तो उसे हम जो है नींबू की शिकंजी दे सकते हैं, आम कैरी, कच्ची कैरी का बना हुआ आम पना भी दे सकते हैं, और हमारे बीकानेर में तो इमली का भी पानी बनाते हैं, इमली और कैरी को मिला करके भी पानी बना सकते हैं, उसको अगर पिया जाए तो हम इस तेज़ धूप से और इस तेज़ धूप से लगने वाली लू से बच सकते हैं। पानी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप पानी खूब पी रहे हैं तो आपको लू नहीं लग सकती, गर्मी के जो प्रभाव हमारे आपके शरीर पर आने चाहिए वे नहीं आएंगे। तो हमें हाइड्रेटेड रहना है। हम भूखे पेट घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे, चाहे हमें भूख लगे और चाहे ना लगे, हम कुछ ना कुछ खा करके ही घर से बाहर निकलेंगे। जब भी हम भूखे पेट घर से बाहर निकलते हैं हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसे में न सिर्फ लू, अन्य बीमारी होने का भी खतरा हमें बना रहता है, हमें इन्फेक्शंस जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भूखे पेट बाहर ना निकलें। भोजन में मुख्य रूप से दही और प्याज को शामिल करें, इन दोनों ही चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, आपके शरीर को, आपके पेट को ठंडा रखती है। अनावश्यक कार्यों से बचें जो कि दोपहर में होते हैं, काम को सुबह के समय में या फिर शाम के समय में करने की कोशिश करें ताकि आपको तेज़ धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि अगर आपको तेज़ धूप में काम करना पड़ रहा है तो आप धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बोतल हमेशा कैरी करें। भूखे पेट आपको निकलना है ही नहीं, इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट में या वर्किंग प्लेस पे कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आप जूस पी सकते हैं। मार्केट में हर तरह के जूसेस अवेलेबल हैं, बस कोशिश ये करें कि जो रेडीमेड

ब्लेंडेड जूस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे बचे हुए जहर हैं उनमें भयंकर लेवल पर प्रिजर्वेटिव यूज़ किए हुए हैं, जो लिमिट वे बतलाते हैं वैसा होता नहीं है। और फ्रूट जूस अगर रेडीमेड आप ले रहे हैं, जो ब्रांडेड रेडीमेड फ्रूट जूस ले रहे हैं, उसमें 25% जूस होता है, 75% अदर चीज़ें होती हैं। शुगर जो होती है वो रियल नहीं होती है, अनरियल होती है, यानी कि आर्टिफिशियल शुगर होती है। ये सभी केमिकल से बने जो जूस हैं उनसे बचें, और जो नेचुरल जूस है जैसे कि गन्ने का जूस है, आप अपने सामने जो है जूस निकलवा के पी सकते हैं, अदर जो फ्रूट जूसेस हैं वो पी सकते हैं। दही, छाछ, मट्ठा, इसको भोजन में अधिक से अधिक शामिल करें। गरिष्ठ और बासी भोजन से बचें, ऑयली फूड, भारी जो भोजन होता है उसको ना खाएं। ऐसा करके आप लू से बच सकते हैं, तापघात से बच सकते हैं। शिवरिंग भी हो सकती है, हाथ पैरों में कंपन भी हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है और उसके शरीर में खून की कमी है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई पानी पी रहा है बरोबर और इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है तो उसको लू लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा करके आप अपने आप को फिट रह सकते हैं। और कुछ कूलिंग एजेंट्स भी मार्केट में आते हैं, कूलिंग एजेंट्स यानी कि मेंथोल वाले हेयर ऑयल्स आते हैं, मेंथोल वाले टेलकम पाउडर आते हैं, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। अगर आप एयर कंडीशन रूम में रहते हैं तो, या एयर कंडीशन कार चला रहे हैं, तो एकदम से कार से बाहर ना निकले या रूम से बाहर

कूलिंग एजेंट्स भी मार्केट में आते हैं। कूलिंग एजेंट्स यानी कि मेंथोल वाले हेयर ऑयल्स आते हैं, मेंथोल वाले टेलकम पाउडर आते हैं, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। अगर आप एयर कंडीशन रूम में रहते हैं तो, या एयर कंडीशन कार चला रहे हैं तो एकदम से कार से बाहर ना निकले या रूम से बाहर ना निकले। अगर ऐसा आप करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों माइग्रेन होने की शिकायत होना तय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आधा सर दर्द यानी कि माइग्रेन की शिकायत न हो तो एयर कंडीशन का इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करें। अगर आप एयर कंडीशन का एसी का इस्तेमाल करते हैं और एकदम से ही धूप में आ जाते हैं तो लू तो लगेगी लगेगी, लेकिन भविष्य में आपको माइग्रेन की शिकायत भी हो सकती है। ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम समर्स के दिनों में हमारी लाइफ को फिट रख सकते हैं और अपने आप को जीवन के हर एक पहलू पर हिट कर सकते हैं। अब हम कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है,
1: विमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भांप का कटार है।

श्रोताओं, ये जो हम आपसे कनेक्ट हुए हैं रेडियो के माध्यम से और आप पूरे विश्व भर के किसी भी कोने में न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी हमें सुन सकते हैं, यह पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि सैकड़ों किलोमीटर बैठा दूर जो डॉक्टर है वह रोबोट के माध्यम से आज ऑपरेशन भी कर सकता है। कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो रोबोट को निर्देश देते हैं और रोबोट जो है सर्जरी कर देता है। मेडिकल की फील्ड में यह किसी वरदान से कम नहीं है। आने वाले समय में मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि एक बार छोटे नैनो रोबोट्स को बॉडी में एंटर करने के बाद में वे फिक्स टाइम पर डोज की, ड्रग की, मेडिसिन की डिलीवरी बॉडी में करते रहेंगे और हमें बार बार दवाइयाँ लेने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये कि जिस तरह से हवाओं की तरंगों के माध्यम से आज हम आपसे कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हुए हैं, आपसे जानकारियाँ साझा कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में हम बहुत सी चीज़ों पर विजय पा लेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकार भी इस शिक्षा पर बहुत अत्यधिक जोर दे रही है और तकनीकी शिक्षा में लोगों को स्वावलंबी बना रही है, नौकरी करने की मंशा को बदलकर न्यू स्टार्टअप्स अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। विभिन्न तरह के लोन में ब्याज पर छूट और

साथ ही साथ सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रम जो 3 महीने से लेकर के 3 साल 6 महीने विभिन्न टर्म के होते हैं, वे चला करके भारत सरकार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन की ओर अग्रसर है, ताकि लोग अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती है, आम जन भी अपने आप को तकनीकी से अपग्रेड कर सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इस उद्देश्य के माध्यम से भारत सरकार तकनीकी की शिक्षा में कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम चला रही है। आप अपने शहर के किसी भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, टेक्नोलॉजिकल कॉलेज, टेक्नोलॉजिकल स्कूल में जाकर के आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं और किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अपने ज्ञान को विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और उससे मिलने वाले ज्ञान के माध्यम से किसी भी तरह का नया स्टार्टअप शुरू करके न सिर्फ आप अपने जीवन को बल्कि देश के विकास को भी एक नई गति, नई दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम का वक्त हो रहा है पूरा, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। स्वर है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।
1: मैं
0: प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभाग और मॉर्निंग न्यूज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है।

0: एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे

0: चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने

0: की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं

0: Live support, and Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akash.
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम में वार्ताकार श्री नवीन कुमार आचार्य की वार्ता, विषय भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियां।
3: संगीत सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। वर्तमान में संगीत का अर्थ संगत भी लगाया जाता है, अर्थात गाने और बजाने के सामंजस्य को भी संगीत कहा जाता है। संगीत की परिभाषा पर विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने परस्पर अनेक परिभाषाएं दी है। कुछ विद्वानों ने संगीत पक्षियों के शोर को भी संगीत ही माना है, तो कुछ ने झरनों के शोर को भी संगीत माना है। आसान भाषा में कहे तो संगीत वो है जिसकी आवाज़ मात्र से ही मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होना भी संगीत ही माना जाता है। वैसे तो संगीत के विषय में जितना लिखो उतना ही कम है, परंतु प्राचीन काल से ही संगीत का उपयोग राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में भी संगीत का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग तरह से किया जाता रहा है। संगीत की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, इस विषय में भी एक ही बात कही जाती है। जिस प्रकार बच्चे के बोलने का किसी को पता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संगीत के विषय में भी विभिन्न विद्वानों का यही मत है कि संगीत भी आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इसका कोई नियत समय किसी को भी ज्ञात नहीं है। संगीत शब्द सम प्लस ग्रथातु से बना है। प्रामाणिक तौर पर देखे तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मूर्तियों, मुद्राओं व भित्ति चित्रों से जाहिर होता है कि हजारों वर्ष पूर्व लोग संगीत से परिचित थे। यूनानी भाषा में संगीत को मौसिकी, लैटिन भाषा में मूसिका, जर्मन में मूसिक तथा अंग्रेजी भाषा में म्यूजिक कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में हिंदी भाषा का संगीत तथा अंग्रेजी भाषा का म्यूजिक अधिक उपयोग में लिया जाता है। भारत में संगीत की यात्रा। भारत में आदि अनादिकाल से ही संगीत का समृद्ध परंपरा रही है। गिने चुने देशों में ही इतनी पुरानी व इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। भारत में गायन को गीत कहा जाता था। भारत से बाहर अन्य देशों में केवल गीत और वाद्य को संगीत माना गया है। नृत्य को संगीत से अलग बताया गया है। भारत में गायन, वादन और नृत्य को संगीत माना गया है। प्राचीन समय से संगीत को मनोरंजन का भी अभिन्न अंग माना गया है। भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम भी मानो तो 4000 वर्ष पुराना है। संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन संगीत का दर्शन हमें सामवेद में मिलता है। उस समय स्वर को यम कहते थे। भारतीय संगीत की परंपरा निरंतर फलती फूलती और समृद्ध होती रही है। इस पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। भारतीय संगीत की शैलियाँ ध्रुपद, धमार, ठुमरी, भजन, गजल, ख्याल। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ध्रुपद पे। ध्रुपद गायकी का विकास शाही दरबारों से शुरू होता है। गायक तानसेन अपने समय के सबसे बड़े ध्रुपद गायक माने जाते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ध्रुपद की भाषा संस्कृत से ब्रज और इसके बाद अवधि की ओर चली गई। इसी समय ध्रुपद का उपयोग भक्ति के साथ साथ तारीफ और संगीत का महात्म्य भी बंदिशों का विषय बना। धमार। धमार का जन्म ब्रजभूमि के लोक संगीत में हुआ। इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्र में लोक संगीत के रूप में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस लोकगीत में वर्ण्य विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का था, रस श्रृंगार था और ब्रज भाषा थी। गांवों के उन्मुक्त वातावरण में द्रुत गति के दीपचंदी, धुमाली और कभी कभी अद्धा जैसी ताल में युवक युवतियां, प्रौढ़ और वृद्ध सभी द्वारा लोकगीत गाए व नाचे जाते थे। ब्रज के संपूर्ण क्षेत्र में रसिया और होली जन जन में व्याप्त है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय के संगीत परिदृश्य को देखते हुए धमार गायकी की नींव डाली।

ठुमरी ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता रही है, अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठुमरी का जिक्र हो तो ये जानना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि 19वीं सदी के मध्य नवाब वाजिद अली शाह के समय में ठुमरी को अच्छा श्रेय मिला और उसकी परवरिश हुई। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में। इसमें ब्रज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत, यह आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता था। ख्याल ख्याल हिंदुस्तानी कंठ संगीत की सर्वाधिक प्रिय लोकप्रिय शैली। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल का अर्थ विचार या कल्पना। जब एक गायन अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर लय तान के माध्यम से संगीत आकार देता है तो उसे ख्याल कहा जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान हुसैन शर्की ने ख्याल शैली का आविष्कार किया। मारवाड़ी ख्याल को सामान्य भाषा में डिंगल भाषा में लिखा जाता है। सामान्य तौर पर ख्याल के दो प्रकार बताए गए हैं, विलंबित और द्रुत ख्याल। बड़े ख्याल की रचना सदारंग और अदारंग ने की थी। वर्तमान समय में गायन गायक पहले बड़ा ख्याल और उसके बाद छोटा ख्याल दोनों गाते हैं। ख्याल गायकी के जितने भी घराने हैं उनमें सबका ख्याल गाने का अपना अलग अलग अंदाज है। भजन शैली। भजन सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत हो सकता है। भजन मूल रूप से किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत हैं। स्तोत्र और श्रवण का लोक रूप ही भजन है। सामान्य रूप में उपासना की सभी पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान किया जाता है उनमें प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन, और जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। राग ताल नियमों से स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि एक अच्छे भजन की विशेषता होती है। उपासना में प्रयुक्त होने वाले गीतों को भजन की संज्ञा दी गई है। सगुणोपासना के कारण इस विधान को अधिक प्रसार मिला। गजल। गजल शैली प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की अरबी कविता से मानी जाती है। सूफी फकीरों और नए इस्लामी सल्तनत के दरबारों की प्रभाव के कारण 12वीं शताब्दी में गजल दक्षिण एशिया में फैल गई और अब यह भारतीय उपमहाद्वीप और तुर्की की कई भाषाओं की कविता का सबसे प्रमुख रूप है। एक गजल में आमतौर पर 5 से 15 दोहे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं लेकिन जुड़े होते हैं अमूर्त रूप से अपने विषय में और अधिक शक्ति से अपने काव्यात्मक रूप में संगीत में प्रस्तुति की मांगों को पूरा करने के लिए गजलों की प्रकृति भी बदल गई, लंबाई में संक्षिप्त हो गई। गजल का उपयुग 661-750 के दौरान गजल एक काव्य शैली के रूप में अपने आप में आई और प्रारंभिक अब्बासिद युग में पुष्पित और विकसित होती रही है। वर्तमान समय में भारतीय संगीत की स्थिति। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो वर्तमान समय में भारत में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत का भी अत्यधिक प्रचलन है। भारतीय संगीत में ऐसा भी माना गया है कि सुगम संगीत के लिए भी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के समय में भारत में संगीत के क्षेत्र में स्कोप अब बहुत अधिक है। वर्तमान समय में संगीत के क्षेत्र में रियलिटी शोज को भी एक अहम हिस्सा माना जाने लगा है। इससे युवा जनरेशन को टेलीविजन के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने के अवसर मिलते रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में फ्यूजन म्यूजिक की डिमांड भी अधिक होने लगी है। इससे यंग जनरेशन का क्रिएशन पावर भी ग्रोथ हो रहा है। वर्तमान समय में राजस्थानी संगीत में सर्वाधिक क्रिएशन देखे जा सकते हैं। फ्यूजन संगीत क्या है? फ्यूजन संगीत संगीत की दो या दो से अधिक शैलियों को मिलाकर प्राप्त हुआ संगीत है। फ्यूजन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विलय या मेल है। चूंकि इस प्रकार के संगीत का प्रादुर्भाव पश्चिमी देशों में हुआ और वहां से यह भारत में आया है, इसलिए हिंदी में भी इसके अंग्रेजी नाम अर्थात फ्यूजन से ही जाना जाता है। फ्यूजन संगीत का महत्व। फ्यूजन संगीत के विभिन्न शैलियों को सुनने, उनके स्वाद का विस्तार करने तथा दूसरों के साथ साझा आधार खोजने की अनुमति देता है। जैसा कि हमने बताया कि माइल्स

0: विल्स जैज फ्यूजन बनाने वाले संगीतकारों में से एक थे। राजस्थान का संगीत, इस प्रकार का संगीत भारत के राज्यों में से एक राजस्थान में उत्पन्न होता है और उदयपुर, जोधपुर और जयपुर सहित भारतीय संगीत विकास के कई महत्वपूर्ण केंद्रों का घर है। क्षेत्र का संगीत भारत के आसपास के क्षेत्रों साझा करता है। राजस्थान लंगा, सपेरा, भोपा हुआ था। इसमें संगीतकार जातियों की एक विविध संग्रह है। मांगणियार संगीतकारों के दो पारंपरिक वर्ग है, लंगा जो ज़्यादातर मुस्लिम दर्शकों और शैलियों के लिए विशेष रूप से थे, और मांगणियार पारंपरिक संगीत में महिलाओं के पणिहारी गीत शामिल है जो विशेष रूप से पानी और कुओं पर केंद्रित काम का वर्णन करते हैं, जो दोनों राजस्थान की रेगिस्तानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जातियों द्वारा बजाए जाने वाले गीत आमतौर पर आलाप से शुरू होते हैं जो धुन सेट करता है, और उसके बाद एक दोहे का पाठ होता है। बदलते मौसम का उत्सव राजस्थान के लोक संगीत का बहुत बड़ा केंद्र है। वर्तमान समय में राजस्थानी संगीत का प्रचार प्रसार अत्यधिक प्रचलन में है। संगीत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। संगीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं सुना जाता, वरन इसके कई सारे फायदे हैं। अब संगीत का प्रयोग वैज्ञानिक अनेक रोगों के उपचार के अंदर भी कर रहे हैं। अनेक वैज्ञानिकों के रिसर्च ने इस बात को प्रमाणित किया कि संगीत सुनने से कई सारे मानसिक फायदे होते हैं, तनाव कम होता है। आजकल हर इंसान की जिंदगी दौड़ धूप से भरी रहती है, काम करते करते हम बुरी तरह थक जाते हैं। जब संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स मूड के अंदर आता है, हमारे दिमाग में कई नई एनर्जी का संचार होता है, वह हम अच्छा फील करते हैं। संगीत हमारे मूड को बदल देता है। संगीत दिमाग में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है, दिमाग की नसों को आराम मिलता है। कई बार काम का बोझ अधिक होने के कारण नसें थक जाती है, वहाँ दवाई भी काम नहीं कर पाती, वहाँ म्यूजिक थेरेपी काम करती है।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ताकार श्री नवीन कुमार आचार्य की वार्ता, भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियां विषय पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह।

0: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रसारणों की शुरुआत के बाद रेडियो की गूंज जल्द ही भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी थी। रेडियो जगत के लिए 1924 क्यों महत्वपूर्ण है, इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि 31 जुलाई 1924 में सीवी कृष्णमूर्ति चेट्टी द्वारा स्थापित मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब से दक्षिण भारत में प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की गई और इंग्लैंड से लाए गए रेडियो उपकरण ने इस पहल को साकार किया। आरंभ में 40 वॉट के ट्रांसमीटर से प्रसारण किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 वॉट के अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर में बदल दिया गया। हर शाम लगभग 2.5 घंटे तक संगीत और वार्ताओं का प्रसारण किया जाता था। ये कार्यक्रम उस समय के श्रोताओं के लिए एक नया और अनोखा अनुभव था। श्रोताओं, इसी पहल ने दक्षिण भारत में ब्रॉडकास्टिंग की नींव रखी, लेकिन बुरा अनुभव ये रहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1927 में इस सेवा को विराम देना पड़ा। लेकिन रेडियो का सफर तो जारी रहा और आप और हम आकाशवाणी के प्रसारण कहीं भी और कैसे भी सुन रहे हैं। और अब हमारे इस अंक के मेहमान श्रोता की बात करें। श्रोताओं, आज हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया है, यानी 3 पीढ़ियों तक सुनने वाले श्रोता। सबसे पहले सुनिए पार्वती देवी सोनी क्या कहती हैं रेडियो के सफर के बारे में।
2: मैं तो बचपन से ही यह सुनती हूँ और वीर रमान रेडियो बहुत बड़ो वीर मान खूब सुनबो करते गाना सुनना बहुत ही शौक था। अब तो मेरा गाना बहुत ही चलो वीर मान मना करता है कि तो तेज मत चलाना बन मैं तो चलाती गाना रे भी शौक। राजस्थानी गीत बहुत पसंद है। ससुराल में तो बीटा हमारा तो टी वी ही को नहीं बट नौकरी हुई नहीं जाना रेडियो लियो बटा जाना वो पच रिटायर हुआ जाना अठा ले आया जाना वो सुन लग गए गाना भी सुनती वीर मान ये गाना सुनाती हूँ बाजरिया थारो खींचो वो गाना लागे सवाल बाजरिया थारो खींचो लागे गाना सवाल लागे गाना सवाद बाज लागे गाना सवाद बाजरिया थारो की खदब देसी च खींचो तो भी मैं गालिया मूँ खदब देसी च खींचो तो भी मैं गाल मूँ खान मन बैठ बल गया मारा होठ बाजरिया तारो की चढ़ो लागे गना सवार।

0: आप बचपन से ही आकाशवाणी को सुनती आई हैं। आपको फिल्म संगीत और लोक संगीत ज्यादा पसंद थे, और अब सुनते हैं इनके बेटे की बहू यानी पुत्र वधु प्रीति सोनी की यादें और अनुभव।
1: शादी से पहले मैं भी रेडियो सुनती थी, पर है ना, मुझे ये पता नहीं है कि वो आकाशवाणी का था या कैसे था, पर सुनती जरूर थी मैं। उसमें ना वो गानों का ही प्रोग्राम था, तो ना उसका मेरा इंतजार रहता था कि आज तो वो आएगा तो हम सुनेंगे। तो बचपन में हम भी सुनते थे, हमारे घर में भी पहले रेडियो ही था, टीवी तो बहुत लेट आया था बचपन में ना। फिर घर पे रेडियो बंद हो गया था तो हम ननिहाल जाते थे ना, तो ननिहाल है ना, नानी जी के पास ही रहती थी मैं, तो ना सुबह सुबह रामचरितमानस ये लगाते थे, नानी जी को भी बहुत शौक, वो पढ़े हुए नहीं थे तो पढ़ तो कुछ सकते नहीं थे, तो रेडियो में सब सुन लेते थे, तो हम भी सुनते थे फिर बचपन में। और

0: दोपहर में उनको ये सुनने का शौक था, नानी जी को भी, तो वो सुनते थे। और शाम को वो लोकगीत आते हैं तो वो सुनते थे। और बहुत बार तो वो पौधों के बारे में जानकारी देते थे, वो भी सुनते थे। वो उनको शौक था पौधों का भी, वे नानी जी को। और नानी जी के साथ खूब एंजॉय किया है रेडियो में। फिर है ना, नाना जी भी ना बोले गए एक छोटा रेडियो और ला देता हूँ तो रात को भी सुन लिया करो, क्योंकि रात को फिर नानी जी के पास ही सोते थे तो टीवी तो थी नहीं वहाँ पे। तो फिर ना रेडियो लग के दिया तो रात को थोड़ी देर गाने सुन के फिर सो। महिला जगत आता है ना तो हम सुनते हैं, सासू जी बोलते हैं आ जाओ देखो बिंदनी ये कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हम सुनते हैं उसमें। और फिर हमको वो बोलते भी हैं कि ऐसा ही बोल देंगे कि अपने को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोग्राम और हो तो जॉइंट में कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, दोनों का खर्चा आधा आधा हो जाता है। और अलग अलग करते हैं तो खर्चा भी डबल लगता है और वेस्ट भी बहुत जाता है, इससे अच्छा जॉइंट में कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं ये। प्रीति राज पुरोहित से वो बोले थे ना तो उनका भी आया, तो मैं मुझे बताया था मम्मी ने कि इंटरव्यू आ रही है कि सुन लो। मैं कहा हाँ मम्मी बहुत अच्छा है, मैं कह डॉक्टर तो।
1: हमारी पुरानी श्रोता प्रीति सोनी ने बताया कि रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों में क्या अंतर है।
0: देखो रेडियो में तो फायदा ये है कि वो चलता रहेगा और अपन अपना काम भी कर सकते हैं, और टीवी में तो एक जगह बैठ के देखना पड़ेगा, वहाँ आप दूसरा काम नहीं हो सकता, ये बात है, ये अंतर है। और टीवी में तो फिर आंखों पे भी फर्क पड़ता है, और रेडियो में तो खाली सुनना होता है अपने को और अपना काम भी अपन बराबर रेगुलर कर सकते हैं, ये फर्क है उसमें।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात की भी इन्होंने चर्चा की और कहा कि ये बातें रेडियो पर ही सुनिए।
0: बच्चे तो देखो वो ऊपर रहते हैं, हम लोग नीचे सुनते हैं रेडियो, तो कभी कभी कोई प्रोग्राम अच्छा आता है तो वो भी सुनते हैं कि हाँ बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जैसे मोदी जी का आता है मन की बात तो वो भी हम सुनते हैं, तो अच्छा लगता है कि मोदी जी कितना अच्छा बोल रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं कि भी। मन की बात में मोदी जी बोलते हैं कि अपने भारत के जो भी प्रोडक्ट है उनका रुझान आप मतलब ज़्यादा बढ़ाओ उनको, कि लोकल को वोकल बनाओ आप, ऐसे नहीं कि बाहर की चीज़ों का आप ऐसे इस्तेमाल करो, कि नहीं अपने भारत में जो बनी हुई चीज़ें हैं ना उनका इस्तेमाल करो बाहर की चीज़ों का नहीं। ये बात हमें रेडियो से ही पता चली, पहले पता नहीं थी, और फिर सुना तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम भी है ना ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं अपने भारत में बनी हुई चीज़ है वो ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर की चीज़ नहीं करेंगे इस्तेमाल। मैं मोदी जी इतना कर रहे तो अपन इतना तो अपन भी कर सकते हैं। राजस्थानी गीत एक अच्छा लगता है बहुत, वो जोधपुर वाला कान्या मान्या कुर वाला।
2: वो कान्या मान्या कुर चाला जोधपुर, वो जोधपुर का कबूतर और भाई उड़ता रे कुर, मोटा ना बोली कुर थोड़ा बोलिया हूँ।
0: एक वो देराणी जेठाणी वाला आता है ना वो भी अच्छा लगता है, मारी देराणी जेठाणी रूसी जी सासू जी मन्ना वाले, वो भी बहुत अच्छा लगता है।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा था कि आज के कार्यक्रम में 3 श्रोताओं को शामिल किया गया है और अब बारी है तीसरे श्रोता की और आप हैं काजल सोनी। काजल ने बताया कि दादी जी सुबह सुबह रेडियो ऑन कर देते हैं और हम सब आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं। आपने कहा कि रेडियो के कई फायदे हैं, विशेष तौर से बच्चों के बारे में कहा।
1: दादी जी सुबह चालू करती है तो लगभग घर में हर कोई सुनता है, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में सुनते हैं, जो मोदी जी के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में सुनते हैं, किसानों से जुड़ी हुई जो चीज़ें आती है उनको सुनते हैं, जो गाने आते हैं, लोकगीत आते हैं, जो राजस्थानी मारवाड़ी चीज़ें आती है

0: वो भी सब सुनते हैं, जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती है उनको भी सुनते हैं। जो चीज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से या टीवी देखने से मिलती है उससे अच्छा है आप सुन लो उसको, वैसे ही आप गेन कर लोगे कि हाँ हमने देखा है, कि हमको पता है कि ये चीज़ें अभी चल रही है रिसेंट में। हाँ, महिलाओं के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई जाती है, उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके इमोशंस, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके बारे में डिटेल में चर्चा की जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के, और जो भी ज्ञान की चीज़ें मिलती है सुनने को उससे हौसला भी बढ़ता है कि हाँ कोई भी कुछ कर सकता है, जो गृहस्थ में है वो भी कुछ कर सकती है।
1: काजल सोनी कहती हैं कि समय प्रबंधन के लिए आकाशवाणी सबसे बड़ा उदाहरण है।
0: एक चीज़ और है कि जैसे समझ लो पहले वाले जो लोग हुआ करते थे तो वह आकाशवाणी को सुनकर अपना समय मिलाते थे कि भाई हमारी जो घड़ी हमने पहन रखी है या घर में है उसका समय और आकाशवाणी का समय बिल्कुल लगभग सेम होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से अपना समय मिला लेते थे। और आज भी ऐसा है क्योंकि घड़ी आपकी फिर भी 5 मिनट आगे 10 मिनट पीछे हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी अपने सिस्टम के हिसाब से चलती है तो वो बिल्कुल टाइम से चलती है।
1: रेडियो के कार्यक्रम सुनते सुनते कई काम किए जा सकते हैं, क्या कहा काजल सोनी ने।
0: देखो अब रेडियो है तो उसको तो सुनते सुनते आप घर का काम भी कर सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं। फ़ोन में ये चीज़ नहीं है, टीवी में भी ये चीज़ नहीं है, और बच्चों को भी आप टीवी के सामने बिठा दो तो नहीं कंट्रोल रहता उसके ऊपर कि भाई वो क्या देख रहे हैं, क्या चैनल चेंज कर दे। बट रेडियो आप चालू करके छोड़ दीजिए, सुनते रहेंगे, अपनी मौज मस्ती में खेलते रहेंगे तो चलता है, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ना आइज वीक होती है, और माइंड भी अच्छा रहता है, सुनते रहते हैं, इंजॉयमेंट चलता रहता है, काम होता रहता है।
1: बच्चों के लिए अच्छा साधन बताया, क्योंकि अन्य साधनों से बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम वो सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और प्रोग्राम क्या है ये पता नहीं चलता, जबकि रेडियो में इन बातों का डर भी नहीं रहता।
0: जैसे टीवी और मोबाइल है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसमें आप बच्चों को हाथ में दे दो, चाहे रिमोट है चाहे फ़ोन है, वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, उस पर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी ऐप को खोल के कुछ भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा रेडियो में नहीं होता है, क्योंकि रेडियो में एक लिमिट है और उसको आप सिर्फ सुन रहे हो, और उसमें आज तक अच्छी चीज़ें ही सुनने को मिलती है, ज्ञान की चीज़ें सुनने को मिलती है, तो अपन टेंशन फ्री रहते हैं कि ठीक है बच्चे सुने भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत से प्रोग्राम्स मैंने सुने हैं जिनके जिनसे काफ़ी नॉलेज मिलता है, जैसे मैंने भी पढ़ाई वगैरह कर रखी है तो उससे जुड़ी हुई भी काफ़ी चीज़ें रेडियो में सुनने को मिलती है, तो उससे भी ज्ञान बढ़ता है और लगता है कि हाँ ये अपडेट करना चाहिए, और कुछ नए आइडियाज़ भी आते हैं उनको सुन के कि हाँ अपन भी लाइफ में ये कर सकते हैं, भले ही आप बिजी शेड्यूल में हैं, आप गृहस्थी में हैं या और भी कोई काम आप करते हैं। और इसमें ऐसी भी चीज़ें मुझे सुनने को मिली है जिसमें प्रोत्साहन देते हैं लेडीज़ को कि भाई आप गृहस्थ होने के बावजूद भी कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे हो गए आप गृहस्थ में उलझ गई है तो आप कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ किया जा सकता है। संस्कृति परंपरा जो भी है भारत से जुड़ी हुई चीज़ें वो सब आज भी रेडियो में हमने कुछ सुनने को मिलती है और उसको निभा भी रहा है, आज तक बता रहा है, इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है।
1: श्रोताओं, रेडियो हमें संस्कार देता है, क्योंकि आज के मेहमान श्रोताओं से ये साबित हो गया, दादी बहू और पोती तीनों का रेडियो से जुड़ाव अपने आप में एक मिसाल है। आज के अंक में बस इतना ही, आगामी नए अंक में नए उदाहरण लेकर फिर उपस्थित होंगे। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित विशेष कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर थे श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: बजने को हैं। प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए।

0: समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
1: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
2: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमधरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33,72,00,000 रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनकी सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। श्री खेवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया।

0: प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की

0: दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ हाँ, हाँ, हाँ।

0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।

0: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए।

0: उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है 22 डेज। स्वर है शान का।

0: ए वेनसडे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना तौची रैना के स्वर में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना।

जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

समाधान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पेपोन के स्वर में। फिल्म नोटबुक का ये गीत सुनिए, स्वर है मोहित चौहान का।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान।

0: और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गदर टू फिल्म का गीत आपने सुना विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में। गीत के बोलते सईद कादरी के, संगीत था मिथुन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मीत ब्रदर्स की आवाज में। उनका साथ दिया है अरिजीत सिंह, रोज किल्ला और खुशबू ग्रेवाल ने। फिल्म का नाम है बागी। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है मीत ब्रदर्स का।

मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह, रोचक किल्ला और खुशबू ग्रेवाल की आवाजों में बागी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम में, आप सुनेंगे कुछ भूले बिसरे गीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है सन्यासी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सन्यासी फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की आवाजों में। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना आशा फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है चोरी चोरी। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत है शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अनुपमा फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल थे कैफी आजमी के, संगीत था हेमंत कुमार का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आराधना। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में आराधना फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था एसडी बर्मन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आरजू। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आरजू फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोंसले की आवाज में आपने सुना फिल्म उमराव जान से ये गीत। गीत को लिखा था शहरयार ने, संगीत था खयाम का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। गीत के बोल हैं निदा फाजली के, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म आप तो ऐसे ना थे से ये गीत। गीत को लिखा था निदा फाजली ने, संगीत था उषा खन्ना का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत आशा भोंसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लोफर। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आशा भोसले की आवाज में गाए लोफर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से।

महिलाएं अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे पादप स्वास्थ्य दिवस, किचन गार्डन और जैविक खेती, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से सौंदर्य निखार, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर, लोकगीतों में प्रकृति का वर्णन।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्यक्रम में लघु जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, नीति आयोग, महासागर, औषधीय पौधे लगाएं जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज़।

जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:40 पर आकाशवाणी जयपुर के जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामरु चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे कपास की बुआई उन्नत किस्में, खेत में लगाएं औषधीय पेड़ पौधे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और लू एवं तापघात से बचाव जैसे विषयों पर। इसके साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से सिंधी समाचार। माफ कीजिएगा, आप सुनेंगे कुछ ही देर में सिंधी कार्यक्रम।

0: हाज़िर आहियूं खणी अवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम महेश कुमार किशनाणी जो तव्हां सभी ॿुधंदड़नि खे प्यार भरियो नमस्कार। सामाइन अॼु महीने जो पहिरियों आर्तवार आहे ऐं असांखे ख़बर आहे त तव्हांखे इंतज़ार रहंदो आहे युवाउनि जे प्रोग्राम जो उनवान आहे नई रोशनी नवा वीचार। इन सां गॾो गॾु अॼु तव्हां मौज माणींदा गीत संगीत जी बि
1: तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो पर कॾहिं तव्हां दुकान ते आयो कॾहिं ऑफिस में कॾहिं मार्केट निकिता आहियो त कॾहिं सफ़र पिया कयो त रेडियो सेट खे मिस कंदा आहियो हा न

0: हाणी सिंधी प्रोग्राम बुधण जी राह में इंदड़ सब मुश्किलूं आसान करे रयो आहे तवां जे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल। हाँ, यो मोबाइल तवां के असाया सिंधी प्रोग्राम बुधाए सगंदो दुनिया जे कहें भी कुंड में, दुबई में हुजो, स्पेन में, अमेरिका में या अफ्रीका में, हर जगह ते तवां बुधी सगंदा पहंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम। तवां के करणो बस एतरो ही आहे त जीअं तवां ॿिया एप्स डाउनलोड कंदा आहियो, बस इएं ही प्ले स्टोर ते वञो ऐं सर्च वारी जॻह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज़ ऑन एयर ऐं उन खे इंस्टॉल कयो। इंस्टॉल कंदे ही तव्हां खे मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ई हेठि प्रसार भारती जो लोगो नज़र ईंदव ऐं तव्हां खे उन खे ओपन करणो आहे। ओपन कंदा त साम्हूं पहिरीं खाॿे पासे लाइव रेडियो ऐं साॼे पासे लिसन न्यूज़ लिखियल नज़र ईंदव। तव्हां लाइव रेडियो खे क्लिक कंदा त उते हिकु लंबी फहिरिस्त नज़र ईंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रनि जी। तव्हां खे उते ई सभिनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखियल पढ़ण में ईंदव। सर्च में तव्हां जीअं ई जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ॿ चैनल्स नज़र ईंदव, हिकु विविध भारती जयपुर यानी VBS ऐं ॿियो हवा महल छपियल नज़र ईंदड़ असांजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल। बस अची पहुतासीं सही जॻह ते। हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सभु प्रोग्राम ऐं सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं जो 12:10 ते। त सामिन ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गॾु।
1: सामिन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे थधि जो मौसम हली रहियो आहे ऐं हींअर थधि बि पूरो ज़ोर ॾेखारणु शुरू करे छॾियो आहे, त तव्हां सभई पंहिंजो ध्यानु रखो ऐं इन मुंद में उहे सभु शयूं खाओ जेके इन मुंद में असांखे खाइणु घुरिजनि, जीअं खोराक खाॼा, बाजरी जी मानी या गुड़ जो वधीक इस्तेमालु कजे जंहिंसां सर्दी असां ते अटैक न करे सघे। सामिन, हीअ त थी मुंद जी ॻाल्हि। अॼु आहे ब्रेल लिपीअ जो ॾींहुं, माना अॼोके ॾींहं ते ब्रेल लिपि जेका अखियुनि खां जेके विकलांग आहिनि या दृष्टि बाधित आहिनि उन्हनि लाइ पढ़ण जी हिकु लिपि जेके ब्रेल लिपि चइबो आहे उनजो आविष्कार कयो हो लुई ब्रेल, उनजो अॼु जनम ॾींहुं आहे। जॾहिं ब्रेल 3 सालनि जो हो तॾहिं हिकु एक्सीडेंट में हुन पंहिंजी ॾिसण जी शक्ति विञाए छॾी, जंहिं करे हुन खे घणेई समस्याउनि सां रूबरू थियणो पियो, पर हुन हिमत न छॾी ऐं अॻिते हली करे हुन पाण जहिड़नि ही विकलांग या अखियुनि सां जेके न ॾिसी सघंदा हुजनि उन्हनि जे लाइ आविष्कार कयो हुन लिपीअ जो, जंहिंजो नालो आहे ब्रेल लिपि। अॼु हुन लिपीअ जे ज़रिए घणेई दृष्टि बाधित जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजी पढ़ाई लिखाई ढंग सां करे रहिया आहिनि ऐं सुठे सुठे मुक़ाम ते पहुता आहिनि। असीं ॿुधंदासीं गीत संगीत में घणेई कुझु, त अचो सभ खां अवल शुरूआति कयूं था अम्मी या मम्मी फिल्म जे हिन गीत सां, जंहिंखे ॻायो आहे भगवंती नावाणीअ ऐं चेतन।
2: हे, हल ना।

मच्छी माने हल मुसा जाने खाओ मच्छी माने सैर कराया तो खे शहर घुमाया तो खे लाल किलो घुमाया कुतुब मीनार घुमाया इंडिया गेट दिसे जंतर मंतर दिसे।

0: सामिन हिंजर अवी हिन फिल्मी गीत जो मजो माने रहा हुआ हो त नौजवानन लाए प्रोग्राम आहे नई रोशनी नवा विचार अज हिन प्रोग्राम में तमा बुधना चित्रेश रिजवानी ए दिलीप पारवानी सा कयल गाल बोल करे रही आहे सीमा हीरानी
1: हिन प्रोग्राम में अज असा सगद आहिन पत्रकार चित्रेश रिजवानी ए पत्रकार दिलीप पारवानी आई अज असा सगद हनन जी गालबोल जो विषय है युवा ए पत्रकारिता जो पेशो जिते सब डॉक्टर ठवण ता चाहिन इंजीनियर आर्किटेक्ट सीए फैशन डिजाइनिंग आई उन जे अलावा भी केतरा ही पेशा है जिते युवाओं जो रुझान वधिक है पर अज जिते युवा सोशल मीडिया सा सबिन का वधिक जुड़ेल है आई सोशल मीडिया जे जरिए हु जान भी वठे तो सजे देश जी दुनिया जी उन के खबर भी आए आई अज युवा में चंगो बदलाव भी आए पत्रकारिता की तरफ भी मुड़ी रो है छोकि मीडिया सा सभी का अगर जुड़ल केर है तो वह युवा शक्ति ही आए तो पत्रकारिता की तरफ भी जो ओतरो ही रुझान हली रो है दिलीप जी सभी का पैरी मां तवा का पुछंदस कि पत्रकार

0: सोशल मीडिया जे ज़रिए हू ॼाण बि वठे थो सॼे देश जी दुनिया जी हुन खे ख़बर बि आहे ऐं अॼु युवा में चङो बदिलाउ बि आहे ऐं हू पत्रकारिता जी तरफ़ बि मुड़ी रहियो आहे छोकी मीडिया सां सभिनि खां अगरि जुड़ियल केरु आहे त हू युवा शक्ति ई आहे त पत्रकारिता जी तरफ़ बि उन्हनि जो ओतिरो ई रुझान हली रहियो आहे त दिलीप जी सभिनि खां पहिरीं मां तव्हां खां पुछंदसि की पत्रकारिता जो पेशो युवाउनि लाइ केतिरो सही आहे छा युवाउनि खे हिन पेशे में अचणु घुरिजे
1: पत्रकारिता जो जेको पेशो आहे उहो जोश भरो ॿियो हिकु काफ़ी साहसिक कमु आहे ॿियो पत्रकारिता जीअं असां ॼाणूं था की असांजे लोकतंत्र जो चौथो स्तंभ मञियो वेंदो आहे पत्रकारिता जे माध्यम सां असां पंहिंजी ॻाल्हि खे लाखों माण्हुनि ताईं पहुचाए सघूं था त हीउ हिकु अभिव्यक्ति जो सशक्त माध्यम आहे त अहिड़े जोश ऐं साहसिक जज़्बो रखण वारे पेशे सां अॼु जो युवा जुड़णु चाहे थो की उहो बि हिन पत्रकारिता जी जेकी शक्ति आहे उन जे माध्यम सां पंहिंजी जेकी आवाज़ आहे उहो जनमानस तक पहुचाए सघे ॿियो अॼुकल्ह जेको पत्रकारिता जा नया नया तरीक़ा चेंज थी विया आहिनि नई तकनीकूं डिजिटलाइजेशन जो पत्रकारिता जे खेत्र में काफ़ी बदिलाउ कयो आहे त अॼु जो सोशल मीडिया जी असां जेको ताक़त ॾिसूं था डिजिटल मीडिया आहे अॼु जा नया जेके न्यूज़ पोर्टल्स आहिनि चैनल्स आहिनि इन अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे त इन्हनि जे माध्यम सां युवा वधीक में वधीक इन्हनि सां प्रभावित थिए थो ॿियो हिन में कैरियर ठाहिण लाइ नई टई उहो वधीक रुझान वठे थी
0: जी दिलीप जी तव्हां ॿुधायो की युवाउनि जो रुझान हिन तरफ़ आहे अगरि युवा पत्रकारिता जी तरफ़ अचणु थो चाहे कहिड़ी उन्हनि में विशेषता हुजणी खपे कहिड़ा गुण हू अपनाइनि या कहिड़ी योग्यता उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे
1: पत्रकारिता जे खेत्र में अचण लाइ सभिनि खां पहिरीं त हिकु शैक्षणिक योग्यता जी जेकी सीमा आहे त उन में जेके ॿार ॿारहवीं पास आहिनि उहे पंहिंजे स्नातक स्तर जो पत्रकारिता जो कोर्स करे सघनि था शहरनि में कॉलेज ॿियो यूनिवर्सिटीज़ आहिनि त उहे BGMC स्नातक स्तर ते ॿियो पोस्ट ग्रेजुएट स्तर ते MGMC जो कोर्स कराईंदा आहिनि इन अलावा बैचलर ऑफ जर्नलिज़म ॿियो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कई तरह जा इन में पाठ्यक्रम सम्मिलित आहिनि त इन्हनि शैक्षणिक योग्यताउनि जे द्वारा हू इन लाइ एलिजिबल थी सघनि था ॿियो इन में उन्हनि खे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बि कॉलेज ॿियो यूनिवर्सिटीज़ में मिले थी इन अलावा उहे जेके समाचार पत्र आहिनि चैनल्स आहिनि उन्हनि में इंटर्नशिप बि करे सघनि था त उन जे माध्यम सां हू इन पत्रकारिता जे खेत्र में शामिल थी सघनि था
0: सुठी ॼाण ॾिनी दिलीप जी तव्हां चित्रेश जी मां तव्हां खां पुछणु चाहींदसि की असांजा युवा अगरि पत्रकारिता सां जुड़े थो त देश ऐं समाज जी खु़शहाली तरक़ी बहितरी ऐं सुजाॻी जे लाइ पत्रकारिता जा छा रोल आहिनि जंहिंजी ॼाण युवा शक्ति खे हुजणु खपे
2: हिन सवाल जे जवाब में मां इहो चवंदमि मुंहिंजी जेका सोच आहे उहा इहो आहे की जेको पत्रकार आहे तव्हां हुनखे हिकु डॉक्टर जे बरक्स रखी सघो था
0: जी बिल्कुलु
2: मां इहो छो थो चवां छो की हिकिड़ो जीअं डॉक्टर हूंदो आहे उहो कंहिं मरीज़ जी जाच कंदो आहे हुनजी बीमारियुनि जो इलाजु कंदो आहे हुनखे दवा ॾींदो आहे अगरि ज़रूरत पए त हुनजी सर्जरी कंदो आहे हिकिड़ो पत्रकार हूअं ई हिकु जेको पंहिंजो समाज आहे पंहिंजे आसे पासे जो हाणे कंदो आहे हिकिड़ो पत्रकार हूअं ई हिकु जेको पंहिंजो समाज आहे पंहिंजे आसे पासे जो हाणे चाहे उहो शहर हुजे चाहे राज्य हुजे या चाहे तव्हांजो नंढड़ो सो वार्ड ई छो न हुजे हुनजी समस्याउनि जी पहचान करे हुनजो निदान कंदो आहे हुन समस्या खे साम्हूं आणींदो आहे हिकु वॾे स्तर ते ऐं जेका बि विभिन्न माध्यम आहिनि तव्हांजो TV थियो तव्हांजो अख़बार थियो त अॼुकल्ह सोशल मीडिया जीअं आहे कंहिं बि शइ में तव्हांखे सुधार करणो आहे त तव्हां छा कंदव सभिनी खां पहिरियों समस्या जी पहचान कंदव हिन सभिनी खां पहिरें कदम में जेको पत्रकार जो भूमिका आहे उहा ॾाढी महत्वपूर्ण आहे हिन खां पोइ हुन समस्या जो इलाज जेका माण्हू आहिनि या वरी तव्हांजा जनप्रतिनिधि आहिनि उहा सभु मिली करे करे सघनि था पर हुन समस्या खे साम्हूं आणण जो सभिनी खां वॾो पहिरियों कदम जेको आहे उहो हिकु पत्रकार कंदो आहे ऐं इन करे मां हुनखे हिकु डॉक्टर जे बराबरि मञंदो आहियां बसि हू समाज जो डॉक्टर थींदो आहे छोकी अॼुकल्ह सोशल मीडिया प्रसार वधी वियो आहे त तव्हां ॾिसंदव की आम माण्हू बि हिकु पत्रकार जी भूमिका खे ॾाढी सुठे तरीक़े सां निभाए सघे थो अलाए घणा दुनिया में उदाहरण आहिनि की ॾाढी वॾी वॾी घटनाऊं थियूं ऐं उहा आम माण्हुनि सोशल मीडिया जे ज़रिए सभिनी खां पहिरीं हुन जी ॼाण पूरी दुनिया खे ॾिनी की असांजे पासे में इहो थिए थो ऐं हू हिकिड़ी पूरे वैश्विक स्तर जी ख़बरूं ठहियूं इन करे मां इहो चवंदमि की अॼु जी तारीख़ में त इहो ॾाढो सुठो थियो आहे की पत्रकार त कोई बि आम माण्हू ठही सघे थो अगरि तव्हां वटि संचार जो माध्यम आहे तव्हां पत्रकार ठही सघो था
0: जी
2: बसि थोरो सो कदम खणण जी ज़रूरत आहे
0: जी दिलीप जी जीअं चित्रेश जी ॿुधायो की हर हिकु ॼणो पत्रकार ठही थो सघे
3: त तव्हांजे नज़रिए सां हिकु पत्रकार में कहिड़ी कहिड़ी विशेषता हुजणी खपे, कहिड़ा गुण हुनखे पंहिंजे में अपनाइणा खपनि ताकी हू सुठो पत्रकार ठही सघे?
1: बिल्कुलु, भाउ चित्रेश जेकी ॻाल्हि चई कि अॼु जे दौर में

0: पत्रकारिता है वो कोई प्रोफेशनल वो व्यक्ति ही पत्रकार हुजे कि भई के संस्थान सा जुड़ेल है वो ही इन शय के अग्या वधाए सके तो अजकल छाए छो कि एक तो सोशल मीडिया जो जमानो है इंटरनेट ते असांजो जेको संसाधन है वे काफी वधी विया है नई तकनीकू अची वही है अज जेको असांजो मोबाइल है वो ही अज कैमरे जो कम करे तो वो रिकॉर्डिंग जो कम करे तो वो असांखे पूरी दुनिया सा जोड़े रखे तो इन में छा एक सिटीजन जर्नलिज्म जेके चवंदा आहिनि कि हर एक नागरिक अज जे वट मोबाइल है वो स्वयं के पत्रकार के रूप में वो कम करे सके तो बाकी अज अगर असा दिसू कि एक नई टई पत्रकारिता के क्षेत्र में अचे थी तो उन में केड़ा गुण हुजन खपन जैसा वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बो अधिक सुठो कम करे सके तो इन में कुछ गालियों चर्चा करे सकूं था पत्रकारिता लाए सभी का पहरियों जो गुण है वो है असांजी भाषा से पकड़ असांजी जी भाषा से पकड़ सुठी होंगी असा हिंदी अंग्रेजी या जे भी क्षेत्रीय भाषा में कम क्यों था उन भाषा जो असा के गालायण बोलायण सुठी तरीके से अचे इन सा एक फायदो भी थी दो रोजगार के क्षेत्र में भी असांजी वृद्धि थी है किए कि जी है असा आज राजस्थान में रहंदा है तो अगर असा हिंदी अंग्रेजी सा गद राजस्थानी भाषा जो भी के सुठो ज्ञान आए तो वो आकाशवाणी दूरदर्शन में भी राजस्थान भाषा जो सेक्शन आए बो भी संस्थाओं हैं उन हिसाब से इन में रोजगार जा भी अवसर खुलन था उन का अगर असा बिया गुण दिसूं तो एक खोजी दिमाग हुजन खपे जो किथे भी केड़ो भी घटना थी सके थी तो उन लाए पत्रकार हेडी शख्सियत आए जेको हर टाइम दिमाग में वो घटनाक्रम छा थे पियो उनके सब जानकारी हुजन खपे वो बिल्कुल सक्रिय हुजन खपे इने अलावा आज जी नई टई के एक आत्मविश्वास भी दे रहे जी भी ढी जरूरत है पत्रकारिता अड़ो पेशो है कि जैमें जो में आत्मविश्वास हों ओतरी सुठी तरीके से तैंकी गाल के समाज के सामू रखी सोता ओतरी सच्चाई से पैंकी गाल के सामू रखी सोता तो धैर्य हुजन इन ला जरूरी है कि कई बार असा के ये लगन है कि के खबर की सच्चाई सामू अचण में बो विशेषकर अज जो जो सोशल मीडिया जो दौर है तो उन में जी फेक न्यूज की जी समस्या है उन ला नई टई में धैर्य हुजन खपे कि वो उन समाचार के क्रॉस चेक कन उनमें वास्तविकता केतरी है सच समाज के सामू खणी अचण लाए वो प्रयास कन इन अलावा उनन के 24 कलाक अलर्ट रहण जी आदत विजन खपे काफी सारा कुछ अड़ा गुण हैं जेके पत्रकारिता जे क्षेत्र में अचण लाए आवश्यक है
1: बिल्कुल सुठी जान दिनी दिलीप जी तवा चित्रेश जी पत्रकारिता त हर जगह हले ही पई जी सोशल मीडिया जो भी जमानो आहे पूरो देश या पूरी दुनिया ही गड अची वई आहे पत्रकारिता में तवा कम कर रहा आयो त अन्या ब केड़े सुधार ए सुझाव जी जरूरत आहे
2: सबने का बड़ो सुधार ए सुझाव जको थी सके तो वो आहे एक जगह भी करे थोड़ो दिमाग थदो करे यो सोचण कि जेका खबर असा हाने अगते देण वनऊ था
1: जी
2: वा खबर केतरी महत्वपूर्ण आहे उनके किया तरह सा अगते वधाणो आहे केतरी उनके स्पेस देणी आहे यानी कि किया उनके केतरी महत्ता देणी आहे पंजे संचार माध्यम में जी बी गाल छावा खबर जी दिलीप साहब चयो कि बिल्कुल सही आहे या ना
1: जी
2: उन जो फैक्ट चेकिंग जंखे चबो आहे क्योंकि आजकल या गाल थी वई आ ताके सबने का पहिरो खबर पहुंचाणी आहे
1: बिल्कुल
2: एक जगह भी करे ताकि यो सोचनो खपे कि जेका खबर तांजे स्रोत सा आई आहे वो स्रोत सही आहे भी या ना
1: जी
2: छोकि डाडा दफा एड़े स्रोतन सा भी खबर इंदी वाहन जें जो नालो ता कडी पहिरो बुधियो कोने जेका नामचीन स्रोत आहन वा भी कडी कडी फिसल जी वेंदा आहन ए एक ब खबरो एडी डी छड़ना आहन हन जी माफी घुरनी पोंदी आ त मखे लगे तो जेंखे चूहा दौड़ थी वई आजकल हन सा परते एक दफो हट जी ए थोड़ो दिमाग के थदो करे ता सोचो कि भई यो खबर छ देण लायक आहे ए हन रूप में देण लायक आहे या ना ए छा हन में का बदलाव जी जरूरत आहे या ना
1: जी बिल्कुल दिलीप जी जी चित्रेश जी भी चयो त युवा जेके अचन ता हिन अगर पेशे में त हुनन खे केतरो ध्यान रखण खपे हिन शय जो इन लाइ वो तैयार रहन एड़ी केड़ी गालियूं आहिनि
0: बिल्कुल जेके बा चित्रेश गाल कई कि अजकल जेकी ब्रेकिंग न्यूज जी संस्कृति है त इन जे कारण छ समाचार जेके आइन उनन जी विश्वसनीयता ते प्रश्न चिन्ह लगी वे अजकल इन ला फैक्ट चेकिंग टूल्स अची विया आइन एप्स अची विया आइन कुछ सरकारी स्तर ते गैर सरकारी स्तर ते फैक्ट चेकिंग सिस्टम डेवलप कया आइन इन ला जो कि सोशल मीडिया ते जेकी भी गलत खबरू आइन या यो एक प्रोपेगेंडा जेके चवंदा आइन वो काफी हावी थी वे त इन ला मा चाहिंदम कि जेकी एक त नई टई है उनके वधिक में वधिक अलग अलग विषय ते गहन अध्ययन करण खपे चवंदा आहिनि कि भई एक पत्रकार वट एक आईएएस जेतरो ज्ञान जो एक आईपीएस अधिकारी जेतरो ताकत हुजण खपे जेकी नई टई आहे वो अगर पत्रकारिता में पंहिंजो कैरियर ठाहिण चाहे थी तो उनन के पॉलिटिक्स कल्चर रिलीजन सामाजिक जेके मुद्दा आहिनि उनन सभी

0: ते उन्हनि खे गहन जानकारी हुजणु खपे, उन्हनि जो उन्हनि खे अध्ययन सुठो हुजणु खपे, गॾो गॾु उन्हनि खे जेकी अॼु जी नई तकनीक आहे की कीअं हू पंहिंजे स्त्रोत खे क्रॉस चेक करे सघनि था, ख़बर किथां अचे पई, उहा केतिरी विश्वसनीय आहे, उनखे हू अगरि अॻियां वधाइण चाहिनि था, सच्चाई आहे उहो समाज जे साम्हूं रखनि। इहो पत्रकारिता जो बिल्कुलु हिकु नैतिक कर्तव्य बि आहे, ॿियो इहो असांजो हाणे उद्देश्य बि आहे।
1: बिल्कुल दिलीप जी, केरु बि युवा पत्रकारिता जे पेशे में अचण थो चाहे त हुनखे शैक्षणिक योग्यता किथां वठणी खपे?
0: अगरि असां शैक्षणिक योग्यता जी ॻाल्हि कयूं त हिते जेके प्रमुख रूप सां कोर्स आहे उहो BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन। इहो कोर्स लॻभॻि पूरे देश में, विदेश में, ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में हर जॻह करायो वेंदो आहे, त हिन सां हू पत्रकारिता जी शिक्षा ग्रहण करे सघनि था। ॿियो अगरि कोई ग्रेजुएट आहे त हू पोस्ट ग्रेजुएट स्तर ते उनमें MJMC कोर्स थींदो आहे, मास्टर ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, त उनजे माध्यम सां हू पत्रकारिता जी पढ़ाई करे सघनि था। इन अलावा काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बि थींदा आहिनि, असांजा डिप्लोमा कोर्स बि थींदा आहिनि, एडवांस डिप्लोमा कोर्स थींदा आहिनि। त पत्रकारिता जेको आहे अॼु शैक्षणिक रूप सां ॾाढो वॾो अकादमिक क्षेत्र थी वियो आहे, ॿियो इन में रोज़गार जी बि अपार संभावना आहिनि। सरकारी स्तर ते बि काफ़ी सुठा संस्थान, ॿियो जेके बि महानगर आहिनि उते बि आहिनि। इन अलावा अनेक असांजा कॉलेज, ॿियो यूनिवर्सिटी आहिनि जंहिंमें पत्रकारिता जी पढ़ाई कराई वेंदी आहे। इन सां नई टई पत्रकारिता जे क्षेत्र में कदम रखी सघे।
1: जी दिलीप जी, तव्हां इहा ॼाण त असांखे ॾिनी की शैक्षणिक योग्यता केतिरी खपे युवाउनि खे। जेको युवा अगरि पत्रकारिता करे वरिती आहे त हू कीअं हिन में अॻियां वधी थो सघे ऐं हुनखे छा करणु घुरिजे?
0: बिल्कुलु, पत्रकारिता जा जेके असां हींअर कोर्स जी चर्चा कई त केर नई टई इहे कोर्स करण खां पोइ ई जेके युवा आहिनि उहे समाचार पत्र, पत्रिकाउनि, न्यूज़ चैनल, ॿियो घणेई मीडिया संस्थाऊं आहिनि उन्हनि में रोज़गार जा उन्हनि खे अवसर मिलंदा आहिनि। फील्ड में हू रिपोर्टर जे रूप में, प्रेस फोटोग्राफर जे रूप में, एंकर जे रूप में, अगरि असां संपादकीय में ॾिसूं त संपादक, उप संपादक, कॉपी एडिटर, ॿियो कॉपी राइटर, एंकर, उद्घोषक, गॾोगॾु अॼुकल्ह जेके प्रोडक्शन आहिनि, जेके ऑडियो वीडियो, ॿियो सोशल मीडिया ते जेको प्रोडक्शन जो वर्क आहे उन में बि हू कमु करे सघनि था, जंहिंसां उन्हनि जे रोज़गार जो हिकु नयो आईंदो ठहींदो। गॾोगॾु हिन में असां ॾिसूं था की हिकु जनसंपर्क यानी की PR जो क्षेत्र बि काफ़ी वॾो थींदो आहे, जंहिंमें सरकारी विभाग आहिनि, निगम आहिनि, कॉर्पोरेशन्स आहिनि, अनेक प्राइवेट संस्थाऊं आहिनि, उन में बि जनसंपर्क अधिकारी आहे, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आहे, त इन तौर ते बि हू नौकरी करे सघनि था। गॾो गॾु हिकु वॾी हिन में अवसर ॿियो आहे की अॼुकल्ह जेके CBSE स्कूल आहिनि उन में बि मास मीडिया हिकु विषय जे रूप में पढ़ाईंदा आहिनि, त तव्हां शिक्षा जे क्षेत्र में बि हिन में काफ़ी अवसर आहिनि। इन अलावा सरकारी स्तर ते बि PRO वग़ैरह जी वैकेंसी निकिरे थी, उन लाइ बि तव्हां प्रयास करे सघो था। जेकी नई टई आहे उहो इन जे माध्यम सां सरकारी नौकरी बि प्राप्त करे सघनि।
1: जी बिल्कुलु दिलीप जी, तव्हां चङी सुठी ॼाण ॾिनी ऐं ज़रूरु असांजा युवा हिन अवसर जो लाभ खणंदा ऐं अॻियां वधंदा ई। त दिलीप जी, चित्रेश जी, तव्हां अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में आया ऐं तव्हां एतिरी सुठी ॼाण असांजे युवाउनि खे ॾिनी, त तव्हांजो ख़ूब धन्यवाद आहे।
2: तव्हांजो शुक्राणो।
0: तव्हांजो शुक्र।
3: नई रोशनी, नवा वीचार, हिन उनवान तहत अवी ॿुधी रहिया हुआ हींअर ॻाल्हि ॿोल। सामाइन, अचो हाणे ॿुधूं था फिल्म झूलेलाल जो हीअ गीत, जंहिंखे ॻायो आहे मास्टर चंद्र ऐं साथियुनि।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज में। फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है यंगिस्तान। गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत है जीत गांगुली का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में यंगिस्तान फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल थे कौसर मुनीर के, संगीत था अजीत गांगुली का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जख्म। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है MM करीम ने।

विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाजों में आपने सुना विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था हंसिका पारिकर का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम

0: प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गैस पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक और पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज प्रस्तुत करता है रेखा आचार्य और सुरभि बोहरा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सुरभिबेन, आ बात तो है कि राजस्थान री तो बात ही निराली है। इनरे नाम सुहीरी वैभव गाता चल के आप और राजस्थान रंगीलो प्रदेश भी है। इरी धरती वीरा री धरती कही जावे। इरो इतिहास साहस और स्वाभिमान सु भरपूर है। सागे सागे अठेरो खान पान पहनावो, अठेरी लोक संस्कृति, लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक गीत सब रा सब अठेरे लोगों रे माए समाहित है। ब्योरे काल जे में रहे ये चीजों और देश क्या विदेशों में भी राजस्थान रो जयकारो है।
3: बिल्कुल साची बात हाँ। कही रेखा बहन, राजस्थान रा लोकगीत आपरे माए पूरो जीवन लेर चाले। एक गीत सु लेर जिका के गीत हुए नी बियाने जन्म सु लेर मरण तक जुड़ी उड़ा है, जिका पीढ़ी दर पीढ़ी चाले। इन लोकगीता में तो हर्ष उल्लास सुख दुख प्रेम डर घृणा भक्ति शोक सब रा भाव अलग अलग रूप में हुए। प्रकृति हो या कृषि मौसम ईरा जिका भाव हुए नी बे लोकगीता में खूब हुए। और रेखा बहन ई गीता रे माए तो सारो अपनोपन बस्यो रे वे है।
2: सही कह रहे हो, राजस्थान तो लोकगीत प्योरी जान है जिकी आपकी पहचान देश विदेश में भी बनाई है। और सुरभिबेन कदई तो इमें बादल और वर्णन तो कदई रेतीला धोरा री बाता, कदई सावन री रिमझिम तो कदी चौमासो सियाले और लोकगीत ए सब सुन प्रात तो कहवे नी मन इतो खुश हो जाया करे। और सबसे खास बात तो आ है कि राजस्थान जिसी गर्म धरती में भी लोकगीतों में प्रकृति सुजोड़ इतनी घनी और फुटरी फुटरी भावनाएं प्रकट करी है कि जब केसरिया बालम गीत आप जब वो सुनियो नी तो ये लागे पूरो राजस्थान बोल उठियो है।
3: बिल्कुल सही कह वो रेखा बहन, अपारी संस्कृति में प्रकृति में हमेशा सु ही सम्मान मिलियो है। पेड़ पौधा नदी बादल पंछी सब ने लोकगीता में जगह मिले है।
2: और प्रकृति रहे जिका छोटा छोटा छोटा छोटा सुंदर सुंदर पक्षी बनी ये माध्यम सु विरह प्रेम सावन ये सब री जिकी भावनाएं बनी वह मन में इसी उपजी है। मतलब कि लोकगीतों ने माध्यम से उपजे है कि जो चातक पक्षी है वो प्रतीक्षा और आशा रो, तो कोयल है वह प्रेम और मधुरता ने व्यक्त करे।
3: बिल्कुल रेखा बहन, और मोर सावन खुशी और प्रेम ने तो पपीहो जिको है वो पक्षी जिको है पपीहो वो प्यास रो और पूरे
2: वो इंतजार रो जिको हाँ, है वो प्रतीक ही है।
3: बिल्कुल, और जद लोक गीता में पपीहा बोले और मोर नाचे नी तो लागो कि मानो कि पूरा प्रकृति जिकी आपरी मन री बात है बा कह रही है।
2: रही सही कह रही हो। और तो और सुभी बहन, आजकल री भागदौड़ वाली जिंदगी रे माए ए लोक गीत आपरो सिर्फ मनोरंजन करे कोनी बल्कि आपाने आपारी जड़ों से जोड़े। ई लोकगीत में मिट्टी री खुशबू संस्कार और प्रकृति प्रेम सब रा दर्शन हुए। ए लोकगीत

0: सिर्फ सुर और शब्द ही कोनी बल्कि इंद्रमाय माटी री खुशबू और मन री भावना रची बसी हुए है। ए लोकगीत आपारी संस्कृति प्रकृति और भावना री अनमोल जी की धरोधर है। और ई चोखी चोखी बात ने सुनो तो अब आपरा भी मन कर रहे है कि आपा बहना ने सुना लो चोखो सो
1: लोकगीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सुरभि बहन, आज आपा सभी पादप स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। और पादप स्वास्थ्य दिवस क्या है कि जिका प्रकृति रा छोटा छोटा है पेड़ पौधा है और जिको स्वास्थ्य है भी ने आपो बेहतर बनाओ। क्योंकि आज आपा देख रहे हो कि कीटनाशक सु या कोई भी जहरीले पदार्थ सु पौधों ने बहुत जल्दी जल्दी मतलब की कहवे की नुकसान पहुंचे। कभी कभी मौसम री कोई अनचेती री बारिश आ जावे, कई भी तूफान आ जावे, बीमी बारिश है खराब हो जावे फसलें हैं जी की। तो ई वास्ता आज जो बखत है नी और पादप स्वास्थ्य दिवस रो भी इमें घणो ही महत्व राखे। हर साल और दिवस पौधा री सुरक्षा और हरियाली बढ़ावन रे खातर ही मनायो जावे है।
1: बिल्कुल।
0: और कहवे नी पौधा जिका वनी धरती रो तो असली गहन हुए। पौधा सुजिका हुए वह हवा शुद्ध रहे, बरसात आवे और वातावरण साफ रहे। अगर पौधा स्वस्थ रहसी नहीं तो मिनखारो जीवन भी तो स्वस्थ ही रहेला।
1: बिल्कुल सही कह उठे रेखा बहन। आजकल तो घरे माई कहीं करे कि कई तरीका का पेड़ पौधा उगाया
0: सही कह रहे
1: जिका कहीं किचन गार्डन के अलावा। आजकल घना लोग आपरे घर में ही कहीं करे टमाटर छोटी छोटी भिंडी उगावनो या फिर मेथी उगावनो पालक वगैरह उगावे तो किचन गार्डन सु अपने कहीं कि ताजी और शुद्ध सब्जी मिल जाया करे और इनसु कहीं खर्चो भी कम आवे और परिवार रो स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अपारे समय रो भी सदुपयोग हो जावे। कई बार हुए कि अपन खाली बखत में बैठा बैठा सोचा कि कहीं करा तो ई वास्तर अपा किचन गार्डन में अपारे समय रो सदुपयोग कर सका और खाली समय भी अपारे अच्छो सो निकल जावे। है नी रेखा भाई?
0: एकदम सही बात कह रहे हो। क्योंकि देखो अबे अबे बड़ा बड़े तो कहनी जगह रही कहानी है। अबे लोग फ्लैट में रहे बिल्डिंग में रहे तो बठी आप छोटी सी जगह में आप हरियाली री दुनिया बसा ले।
1: बिल्कुल।
0: और जद नी आपा जे और एक तरीको भी है देखो सुरभि बहन कि आप पादपरी आप पेड़ पौधों की रक्षा कर सको। क्योंकि इरे में क्या हुआ कि आप बिना रासायनिक खाद और जहरीली दवाई रे खेती करो। और देखो जो पादप स्वास्थ्य दिवस है इरे में भी कहवे कि आपने जैविक खेती करनी चाहिए। ई खेती रे में गोबर की खाद हुए कंपोस्ट हुए खाद और प्राकृतिक उपाय काम में लिया जावे। जैविक खेती सु जमीन भी देखो उपजाऊ बनी उड़ी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इन सु उपजी जी की भी सब्जी और अनाज होनी वे स्वास्थ्य खातिर घना ही लाभदायक हुए। आप देखो यो आजकल प्रदूषण सु जंगल री कटाई सु रासायनिक पदार्थों रे उपयोग सु कितो पौधों ने नुकसान पहुंच रहे प्रकृति ने कहवे नहीं कि प्रकृति नष्ट हो रही है। इन कारण सु भी पादप स्वास्थ्य दिवस रो महत्व घणो बढ़ गयो है और दिवस आपाने संदेश देवे कि पौधारी देखभाल करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगावना ही चाहिए।
1: बेनिया स्कूल गांव और शहरा में कही है कि इन पौधारोपण कार्यक्रम भी करवाया जावे। ई दिवस रे अंतर्गत जिका भी पौधा है वे ज्यादा से ज्यादा उगावन रो एक
0: संदेश दियो जाए कार्यक्रम करे। सही
1: बिल्कुल। लोगा ने पौधा री सुरक्षा पानी बचावन और पर्यावरण ने स्वच्छ राखन रो भी आपा संदेश देवा। तो स्वस्थ पौधा जिका हुआ है वे धरती ने हरियाली देवे। पौधा है जिका धरती रा गहना माना जावे और बरसात में भी काफी मदद हम उन्हें प्राप्त हो सके। तो अपा सबने मिलर पौधा री रक्षा करनी चाहिए और रोज एक पौधा लगावन रो संकल्प लेनो चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: पादप स्वास्थ्य दिवस प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण रो संदेश देवे है। अपा हर जगह ने ज्यादा से ज्यादा पौधा लगावन री प्रेरणा ले सका या फिर अपा संकल्प ले सका। तो स्कूल घर और गांव री हरियाली ने भी बढ़ावना चाहिए। किचन गार्डन और जैविक खेती अपनावन सुरेखा बहन स्वास्थ्य जिको हुए नी वे भी सही रहे और पर्यावरण भी बच्चे रहे पर्यावरण भी बचसी अगर अपा
0: इस तरीके से आप जैविक खेती ने अपना सो आप पादप री रक्षा कर सो। आ तो कह नी सरकारी जिम्मेवारी कहा नहीं है कि वो सड़क रे किनारे इतना पेड़ पौधा लगा रहे है तब वेरी वही देखभाल करे आपरो भी कर्तव्य बने। यहाँ तक देखो आपरी मायोरी भूमिका भी पूरी सूरी हो जाए कि आप अपने टावरों ने शुरू से संस्कार देवो कि देखो पौधों ने तोड़ना नहीं चाहिए। बिना बात रहे कहें नहीं बराबर ही जिका पौधों ने तोड़ लेवे। समय पर पौधों ने पानी देना चाहिए उन्हें सिखाना चाहिए कि उन्हें भी जीव हुए उन्हें भी पानी देने सु उन्हें भी खाद देने सु ए भी खिलखिलासी लहरासी। तो यह सब अपने टावर ने शुरू से सिखाना चाहिए।
1: पादप स्वास्थ्य दिवस अपने प्रकृति की रक्षा करण रो संदेश दिया कि अपनी रेखा बहन अपने बार संदेश देवता की तरीके से अपा बच्चों में संस्कार गाला। तो मैं शुरू से ही कही है कि ये चीज ने सीखता जावे। तो बहने समय हो चलियो है आपने गीत संगीत सुनावन रो सुन सो फूट रो सो की तड़लो।

0: बेनिया, आज रो जमानो फैशन और केमिकल वाली चीज़ों रो जमानो है।
1: बिल्कुल।
0: पर पुराने वक़्त सो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों ने शरीर और सौंदर्य खातिर घणो लाभकारी मान्यो गयो है। आयुर्वेद में प्राकृतिक चीज़ों से सुंदरता बढ़ावन रे उपाय ने बतायो गयो है। तो जड़ी बूटियां ने केवल चेहरों को नहीं निखारे, साथ ही साथ अपारे शरीर ने भी स्वस्थ रखे। नीम, तुलसी, एलोवेरा, चंदन, हल्दी और गुलाब जड़ी बूटियां जिकी हुए नहीं, बस सौंदर्य बढ़ावन में काम में आवे। नीम त्वचा रा कीटाणु दूर करे और पिंपल ने हटावे है। हल्दी चेहरे में चमक लावे और चेहरे पर जितना दाग धब्बा हुए वह कम हो जाया करे। एलोवेरा त्वचा ने नरम और ताजा रखे। चंदन रो लेप अगर आप गर्मी में करा तो चेहरों साफ भी रहवे और इरे उपयोग सु चमकदार भी बनियो रहवे।
1: बिल्कुल सच्ची बात कही सुरभि बहन। देखो अबार आप अबार पादप स्वास्थ्य दिवस री बात करी तो भी मैं आपो ओई देखियो कि आपने आप पर पौधों ने रक्षा करनी है, क्योंकि पौधा खाली वातावरण ने सुरक्षित कोनी राखे, वे आप पर स्वास्थ्य है, वे आप पर जीवन से जुड़ियो रहे वे। और देखो ने अबार तो कितनी चोखी बात बताई कि वे आज आप पर सौंदर्य को निखार नहीं, वे ई चीजों ने ही ले उपयोग में ले, कोई महंगी चीजों की जरूरत का नहीं है। आपने प्रकृति से मिलने वाली चीजों से भी आप पर निखार पा सको। और आप देखो यो आप जी की दादी वे भी क्या करती थी, यही चीजें तो यूज करती थी। भाई यहाँ पर सौंदर्य में जो है थोबार बताए नीम है और
0: तुलसी है
1: और कुआर पाठ है, इरे रस सुचारो कहनी त्वचा बड़ी नरम रहती थी, ताजी रहती थी, मतलब हर वक्त। और त्वचा देख लाग तो कि पपे बुढ़ापो आए ही कोनी है। और यही आप और ये जड़ी बूटियों में ही आयुर्वेद में ही बाला खातिर भी कई कई जड़ी बूटियों बताई गई है। आंवला बाला ने मजबूत बनाए, रीठा और शिकाकाई बालों ने धोवण खातिर भी उपयोगी है। बालों ने पूरा पोषण देवे, सके सके बालों ने काड़ो घणो और चमकदार भी बनाए रखे। आजकल आप देखो कि लोग बाजार ये महंगी क्रीम और केमिकल डाई इतनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे कई क्या हुए कई बार बालों ने खूब सारा नुकसान हो जाया करे,
0: कमजोर हो जाए
1: बाल, कमजोर हो जाए, झड़न लाग जावे और ज्यादा से ज्यादा सफेद बाल आवन लाग जाए। पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्राकृतिक तो हुई है, इरे कारण है बाला वास्ता भी नुकसान को नहीं पहुंचाए, ना ही आपने शरीर में कोई अंदरूनी कोई नुकसान पहुंचाए।
0: बिल्कुल।
1: ई कारण आज फिर से लोग आयुर्वेद की तरफ जुड़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और मैं तो यही कह सकूं कि आयुर्वेदिक जी की जड़ी बूटियां हैं वह तो प्राकृतिक सुंदरता रो आप खजानो है। अगर आप नियमित रूप से इरे उपयोग करो तो शरीर स्वस्थ और सुंदर बनोड़ो रहसी। कहवे नहीं कि भगवान प्रकृति में आपने घनी अमूल्य चीजें दी है, जिनमें जिको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जिको है नहीं वो तो विशेष महत्व रखे।
0: सही बात,
1: आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां त्वचा, बाल और शरीर ये तीनों खातिर बहुत ही लाभकारी हुए।
0: तो बेनिया समय हो चलियो है आपने गीत संगीत री दुनिया में लेर चारवन रो सुन सो और प्यारो सो गीतड़ लो।

0: रेखा बहन, आज अपन सब जिंदगी रे माए आगे बढ़ना चाहो।
1: बिल्कुल,
0: अपन चाहो कि अपारा टाबरों ने भी एक चोखो सो भविष्य मिले, ताकि वे अपारे परिवार सम्मान और खुशहाली सु आपरो जीवन बिताए। और जब बात चोखे भविष्य से जुड़ी उड़ी हुए नहीं, तो सबसे पहली बात आवे शिक्षा रे।
1: घनी फुटरी बात कही सुरभि बहन, क्योंकि शिक्षा ही वह ताकत है जिकी इंसान रे सोच और ब्योरी जीवन शैली मीने पूरी तरह

0: वह बदल देवे।
1: बिल्कुल।
0: और सर्वे बहन शिक्षा रो जिको अधिकार बनी वो तो बेटा हो या बेटी जीवन में मोटो महत्व सगलो रे जीवन में राखे है।
1: हाँ रेखा बहन, और देखो नी अपारी बेटियां भी लारे कोनी, बे भी किसी भी क्षेत्र में कैसू भी कम कोई नहीं।
0: सही कह रहे हैं।
1: अगर बीओ ने सही मौका और उच्च शिक्षा मिले तो वे हर क्षेत्र में परिवार रो नाम रोशन कर सके।
0: हाँ सभी बहन, पहले देखो एक बखत हो जब छोरियों ने पढ़ाई वास्ता ज्यादा छूट मतलब थी कोनी
1: दी कोनी चाहती,
0: छोटी उम्र में खेतों रो काम घरों काम और यहाँ तक कि छोटी उम्र में ही बिना पढ़ना भी देता था या एकदम केवल प्राथमिक शिक्षा वाने दे दी जाती थी। तब आई सोची कि छोरियों तो खाली घर काम खातिर वे ऊंची शिक्षा वास्ता बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल रेखा बहन, अब तो समय बदल गया। अब तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे शिक्षा हुए, नौकरी हुए, खेल हुए, विज्ञान हुए और कई प्रकार का क्षेत्र, अठे तक कि अपारी सेनाओं में भी अब बेटियों जी की यानी बे शामिल होने लगी है। तो बे भी में शामिल हो और देश की रक्षा वास्ते भी लड़ रही है।
0: हाँ सभी बहन, बेटियां कहे नी आगे बढ़ती रहे नी ई खातिर खाली स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि बीरे सपनों ने साकार करने रो जरियो है उच्च शिक्षा।
1: हाँ रेखा बहन, स्कूल रे बाद भी बिने कॉलेज तकनीकी शिक्षा और नए अवसरों तक पहुंच मिले ई खातिर जरूरी है कि बिने उच्च शिक्षा वास्ता प्रेरित करनो, क्योंकि जब एक शिक्षा एक लड़की ने मिले, एक लड़की जब शिक्षा प्राप्त करे तो बस सिर्फ अपने जीवन री नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज ने भी एक नई दिशा देवे है।
0: तभी तो सुरभि बहन आज सरकार भी आगे बढ़ पड़ी, आप री बेटियों रे खातर नवी नवी योजना और सौगात ला रही है।
1: बिल्कुल,
0: सुनहरे भविष्य भी रे सपना सब ने साकार कर रही है। इसी कई योजनाएं चला रही है जिकी छात्रवृत्ति देवे, मुफ्त शिक्षा देवे, कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दे रही है ताकि बेटियां जिकी यानी आगे बढ़े वो हुनर आगे बढ़े।
1: और रेखा बहन ई बात में सबसे ज्यादा जरूरी हुए कि अपा भी अपारी बेटियों पर भरोसा करो।
0: सही कहो,
1: जब शिक्षा री बात हुए तो हुए नहीं कि बियाने बारंडे भी भेजनो पड़े, बारे भी भेजावे है, बाहर से भी बे शिक्षा प्राप्त करनी चाहवे है, कई प्रकार की ट्रेनिंग
0: लेनी चाहवे। सही कहो,
1: तो बे नहीं आपरे घर ने छोड़ बाहर जावना पसंद करे, तो यह में कहीं करना चाहिए कि बियां पर भरोसा पूरा रखना, और साथ ही के कहीं कि कदई तो कहीं हुए कि अज्ञानता हो गई, कदी हो गई और कोई डर है, कोई समाज री सोच जिसके कारण बेटियां हैं जिसके आगे नहीं पढ़ पा रही है, तो बियों पर अपने साथ ही साथ ई वक्त में भरोसा करना चाहिए और
0: अपनी सोच ही बदलनी चाहिए कि नहीं नहीं बेटी भी बारे चार पढ़ सके, उच्च शिक्षा ले सके।
1: बिल्कुल सही मौका देवनो ताकि बे आपरो नाम रोशन करे, आपरे परिवार रो नाम रोशन करे, साथ ही साथ रेखा बहन भी कहीं है कि आप समाज ने भी नई दिशा
0: देवे।
1: तो रेखा बहन
0: क्योंकि देखो कहवे नी शिक्षित बेटी बनी वा आत्मनिर्भर बने,
1: बिल्कुल
0: अधिकार रो ने वा समझे, जीवन में सही निर्णय लेने में वा सक्षम बन जाए। तो क्यों ना सुरभि बहन आज आप ई कार्यक्रम रे माध्यम से आपा सब मिल प्राई हर बेटी ने उच्च शिक्षा देने रो एक संकल्प करो, भरोसा करो, एक कहवे नी एक मजबूत वर वास्ता नींव बनाओ ताकि अगर एक बेटी सपना देखना शुरू करे नी तो आप बिने उड़ान देवो।
1: बिल्कुल, बिने पूरा करने
0: भी करो। तो अबे बहना इतनी चौकी बात तो आप कर लिया, अबे वो सुनो गीतड़ लो।

0: बेना देखो, सब कुछ पहला सु निर्धारित है। आपा कुछ भी बदल को नहीं सको, पर आपारे हाथ में है खुश रहनो और खुश रह पर दूसरों ने भी खुश रखनो। और देखो नी बहना, अबे बातें बातों में बखत री आज ठाई को नहीं पड़ी, इतनी सारी बातें कर ली नहीं तो बखत ठाई पड़े को नहीं। और घड़ी टिक टिक कर इशारा कर रही है कि आज आप आपकी बातों ने अठे ही खत्म करो।
1: बिल्कुल।
0: तो देवो माने सीख, मैं रेखाचार्य,
1: मैं सुरभि बोहरा,
0: घना घना राम राम सा।

0: municipal elections across England and Wales. According to media reports, several Labour lawmakers have privately and publicly called for a change in leadership amid fears that Prime Minister Starmer's leadership could hurt the party's prospects ahead of the next general election. Responding to the calls to quit, the UK Prime Minister pledged that he would prove his doubters wrong. Mr. Starmer said this while giving a speech in London. Back home, benchmark domestic equity indices declined around 1.4% in the afternoon session today. The Sensex plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heatwave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Himanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: ডক্টৰ শর্মা কে সাথ 4 বিধায়কো নে ভি মন্ত্রী পদ কি শপথ লি। ইনমে ভাজপা সে

रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

0: राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

0: दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम

0: विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं MM क्रीम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जिस्म। गीत को लिखा है सईद कादरी ने। संगीत है MM क्रीम का।

जिस्म फिल्म का गीत आपने सुना एमएम क्रीम की आवाज़ में। गीत को लिखा था साहिद कादरी ने, संगीत था एमएम क्रीम का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है फाइव वेडिंग्स। गीत को लिखा है अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने, संगीत है विभास का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आपने सुना फिल्म फाइव वेडिंग्स से। गीत को लिखा था अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने, संगीत था विभास का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए के मोहन और याशिता शर्मा की आवाजों में। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

ए वेडनेसडे फिल्म का गीत आपने सुना तोची रैना की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आजा नचले।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना आजा नचले फिल्म का ये गीत। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत। के और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म का नाम है जिस्म टू। गीत को लिखा है आरको प्रभु मुखर्जी और मुनीश मखीजा ने। संगीत है आरको प्रभु मुखर्जी का।

के और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाए जिस्म टू फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ. शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। IPL क्रिकेट में

0: आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त निशा शर्मा,
1: और मैं हूं आपकी दोस्त कुमकुम स्वामी।
0: तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल, युगों से ये गूंजती पंक्तियाँ मानव जीवन को यही संदेश देती आई हैं कि ज्ञान वही प्रकाश है जो अंधविश्वास और भ्रम के अंधेरे को मिटाता है।
1: और जब यही ज्ञान जिज्ञासा, तर्क और सत्य की खोज से जुड़ता है, तब जन्म लेता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
0: कुमकुम, अगर सदियों पहले इंसान ने सवाल पूछना न सीखा होता, तो शायद आज न बिजली होती, न मोबाइल, और ना ही अंतरिक्ष की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना।
1: बिल्कुल निशा, हर आविष्कार, हर खोज और हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सवाल से शुरू हुई। ऐसा क्यों होता है?
0: और दोस्तों, यही सवाल जब शिक्षा से जुड़ता है तो जन्म लेता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक ऐसी सोच जो अंधविश्वास नहीं तर्क पर विश्वास करती है, जो सुनी सुनाई बातों को नहीं बल्कि सत्य को परखना जानती है,
1: जो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि बेहतर सोच, बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की पहचान है।
0: कुमकुम, जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में स्कूल, किताबें और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है।
1: बिल्कुल निशा, शिक्षा सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमें जीवन को समझने का नजरिया भी देती है। ये हमें सही और गलत के बीच में अंतर करना भी सिखाती है।
0: और दोस्तों, जब शिक्षा के साथ जुड़ती है तर्क करने की क्षमता, तब इंसान हर बात को आंख बंद करके मानने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता है, और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है।
1: वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ विज्ञान विषय पढ़ना नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका मतलब है कि हर बात को सोच समझ कर स्वीकार करना, प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना और नई बातों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना।
0: साथियों, दुनिया में जितनी भी महान खोजें हुई हैं, उन सब की शुरुआत जिज्ञासा से हुई है। कुमकुम, जब इंसान ने पहली बार पक्षियों को उड़ते देखा होगा, तब उसके मन में भी उड़ने का सपना आया होगा।
1: बिल्कुल, और वही सपना आगे चलकर हवाई जहाज के आविष्कार का कारण बना। अगर वैज्ञानिकों ने सवाल पूछने बंद कर दिए होते तो शायद चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं होता। आज इन दवाइयों से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है, वो वर्षों के शोध और वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है।
0: यानी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मानव जीवन को सुरक्षित, सरल और आधुनिक बनाया है, लेकिन कुमकुम, आज भी समाज में कई अंधविश्वास मौजूद हैं।
1: हाँ हाँ निशा, ये तो बात बिल्कुल सही है। कई लोग आज भी बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, कई बीमारियों को जादू टोना मान लेते हैं, तो कई झूठे चमत्कारों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है।
0: और कुमकुम, यही वह जगह है जहाँ शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शिक्षा हमें डर से नहीं, समझ से जीना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर समस्या का समाधान ज्ञान और प्रयास से संभव है।
1: यानी कि वैज्ञानिक सोच हमें ये सिखाती है कि किसी भी जानकारी को बिना जांचे नहीं मानना चाहिए।
0: दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में ये भी जरूरी हो गया है, क्योंकि गलत खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। अगर हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो हम हर जानकारी की सत्यता जांचेंगे और अफवाहों से बचेंगे। कुमकुम, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में परिवार और स्कूल दोनों की बहुत ही भूमिका होती है।
1: बिल्कुल, जब बच्चे सवाल पूछें तो उन्हें चुप कराने की बजाय उनके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला बच्चा ही आगे चलकर नई खोज कर सकता है। अगर बच्चा पूछे कि आसमान नीला क्यों है, तो हमें

0: उसे उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को केवल पढ़ाए नहीं बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करे। आज नई शिक्षा नीति में भी अनुभव आधारित शिक्षा और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चे केवल किताबों तक सीमित ना रहें बल्कि प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से सीखें।
0: निशा, हमारे देश ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की ही है। चंद्रयान, मंगलयान, डिजिटल इंडिया, मेडिकल रिसर्च, ये सब वैज्ञानिक सोच और शिक्षा का ही परिणाम है। जब युवा शिक्षा के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हैं तब देश आत्मनिर्भर बनता है।
1: और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मान की नज़र से देख रही है। लेकिन असली विकास तभी होगा जब वैज्ञानिक सोच समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगी। गांव हो या शहर, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के अवसर मिलने चाहिए।
0: तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी ज़रूरी है। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, स्वच्छता अपनाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, तब भी हम वैज्ञानिक सोच का ही पालन कर रहे होते हैं। जैसे कोविड महामारी के समय हमने देखा कि विज्ञान और शोध ने कैसे पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी।
1: इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा तभी देश बदलेगा। तो दोस्तों, आइए हम केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित ना रहें बल्कि अपने भीतर सवाल पूछने और सच को समझने की आदत विकसित करें, क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार, जागरूक और तार्किक नागरिक बनना है।
0: तो आइए हम अंधविश्वास नहीं, ज्ञान पर विश्वास करें, डर नहीं तर्क को अपनाएं। दोस्तों, आपने किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी, लेकिन असली शिक्षा वही है जो इंसान को सोचने की आज़ादी दे, सवाल पूछने का एहसास दे, साहस दे और सच को स्वीकार की समझ दे।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सपनों को सच करने का हर पल एक अवसर है, ज्ञान की राह पर चलना ही सफलता का असली सफर है। तो आइए दोस्तों, इसी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं क्विज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के वारंगल में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है।
6: और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है।
5: दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के अंत तक। कुमकुम जब धरती हरी भरी मुस्कुराती है, तभी जीवन में खुशहाली खिलखिलाती है। एक छोटा सा पौधा सिर्फ पेड़ नहीं होता है, वो हमारी सांसों, भोजन और भविष्य की उम्मीद होता है।
6: लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर यही पौधे बीमार पड़ने लगे, फसलें कीटों और रोगों से नष्ट होने लगे, तो सिर्फ खेत ही नहीं पूरी मानवता संकट में आ सकती है। हरियाली है जीवन का आधार, पौधों से ही महके संसार। इनकी रक्षा का ले संकल्प आज, तभी सुरक्षित होगा कल और समाज।
5: और दोस्तों, इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ताकि लोग समझ सकें कि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य की नींव हैं।
6: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी थाली, हमारी हवा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अस्तित्व सबसे जुड़ा हुआ है, पौधों का स्वास्थ्य।
5: दोस्तों, दुनिया भर में हर साल लगभग 40% फसलें कीटों और रोगों की वजह से नष्ट हो जाती हैं। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि खाद्य संकट भी गहरा जाता है कुमकुम। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत की है।
6: और दोस्तों, पौधे सिर्फ खेतों में खड़ी फसल नहीं है, वो धरती की सांस है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो ना बारिश होगी, ना स्वच्छ हवा मिलेगी और ना ही पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी और ना ही हमारे जीवन की हरियाली बच पाएगी।
5: लेकिन आज पौधों के सामने कई खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अत्यधिक रासायनिक उपयोग और नए नए कीट और रोग।
6: कई बार हम अनजाने में भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बिना जांच के पौधे या फिर बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना या फिर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई।
5: सही कहा तुमने, और इसका असर जो है केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता है। जब फसलें खराब होती हैं तो महंगाई बढ़ती है, भोजन की कमी होती है और गरीब परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
6: दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहीं करोड़ों लोगों की आजीविका खेती

0: पर निर्भर है। ऐसे में पौधों का स्वस्थ रहना सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का भी प्रश्न है।
1: साथियों, हमारे वैज्ञानिक और किसान लगातार नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। बेहतर बीज, जैविक उपाय और आधुनिक तकनीक के माध्यम से फसलों को सुरक्षित बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
0: लेकिन इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सरकारों या फिर वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी है।
1: दोस्तों, हम पौधों और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे।

0: के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सरकारों या फिर वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी है।
1: दोस्तों, हम पौधों और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक हरी भरी धरती सौंपेंगे,
0: क्योंकि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ मानव जीवन का आधार है। याद रखिए, जब धरती पर हरियाली मुस्कुराती है तभी इंसानियत सुरक्षित और खुशहाल बन पाती है, और जब पेड़ों से आंगन महकता है तो हमारा मन हो जाता है मस्त मगन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: निशा, अभी अभी हमने प्लांट हेल्थ की बात की और उसके बाद करते करते मुझे प्रकृति की उसी विशाल दुनिया का एक और अहम हिस्सा याद आता है।
3: क्योंकि दोस्तों, धरती पर जीवन की कहानी सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि अतः जल राशियों से भी जुड़ी है, जिन्होंने सदियों से मानव जीवन, मौसम और व्यापार को दिशा दी है।
2: सुबह की पहली बारिश से लेकर शाम की ठंडी हवा तक, दुनिया के देशों को जोड़ने वाली व्यापारिक रास्तों तक, हर कहीं महासागर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। कभी कभी लगता है निशा, समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि समय की एक चलती हुई डायरी है। इनकी लहरों ने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है, जहाज़ों को रास्ता दिया है और अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेट कर रखा है।
3: हाँ कुमकुम, इंसान का समुद्र से रिश्ता बहुत पुराना है। पहले के समय में जब सड़कें और हवाई जहाज नहीं थे, तब लोग समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाते थे। व्यापार भी जहाज़ों से होता था। मसाले, कपड़े, सोना और कई ज़रूरी चीज़ें समुद्री रास्तों से दुनिया भर में भेजी जाती थी। यानी महासागर ने दुनिया को जोड़ने का काम किया है।
2: बिल्कुल, और दुनिया को जोड़ने के साथ साथ महासागर एक और काम भी करते हैं निशा। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ पौधों से मिलता है, लेकिन सच ये है कि समुद्र भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। समुद्र में छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और ये पौधे हमें ऑक्सीजन बनाकर देते हैं।
3: यानी कुमकुम, हम जो सांस लेते हैं उसमें समुद्र का भी योगदान होता है। तो सोचो दोस्तों, जिस समुद्र को हम सिर्फ छुट्टियां मनाने की जगह समझते हैं, वो हमारी सांसों का भी साथी है।
2: वैसे दोस्तों, महासागर की बात हो रही है तो आप ये सब जानते होंगे कि धरती पर 5 मुख्य महासागर माने जाते हैं। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर।
3: और साथियों, ये महासागर हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज इंसान ही महासागरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
2: आज समुद्र में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फेंका जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और कचरा समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। और निशा, कई बार तो ये मछलियाँ या फिर कछुए प्लास्टिक खा लेते हैं, जिनसे उनकी मौत तक हो सकती है, या फिर ये उन पॉलीथीन में ही फंस जाते हैं।
3: बिल्कुल कुमकुम, महासागर धरती की जान है। अगर महासागर सुरक्षित रहेंगे तभी धरती पर जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें सिर्फ समुद्र की खूबसूरती देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमें निभानी चाहिए।
2: और जब हम महासागरों की रक्षा की बात करते हैं, तब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारी सीमाएं भी कुछ वीर रक्षकों के भरोसे सुरक्षित हैं, जो है हमारी भारतीय सेना।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: तो दोस्तों अब जरा उस संस्था की तरफ बढ़ते हैं जो भारत के भविष्य, विकास और नई योजनाओं की दिशा तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और वो है नीति आयोग।
1: दोस्तों, अगर आप जानते हो तो पहले भारत में योजनाएं बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन समय बदल गया, चुनौतियां बदल गईं, इसलिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने एक नई संस्था बनाई, नीति आयोग।
0: इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम में ही ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि भारत को बदलना छिपा है। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर आज भी हम 1950 वाले तरीके से 2026 के भारत को चलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? ना डिजिटल इंडिया होगा और ना ही कोई स्टार्टअप।
1: और यही कारण था दोस्तों कि पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो आइडिया फैक्ट्री बने, इसलिए नीति आयोग को बनाया गया, जहां राज्यों की बात सुनी जाए और हम युवाओं के नए विचार आए और तकनीक के साथ विकास हो।
0: निशा, असल में ये नीति आयोग भारत के भविष्य की ब्लूप्रिंट मशीन है। जैसे इसके मुख्य कार्य हैं सरकार को सुझाव देना। दोस्तों नीति आयोग सरकार को बताता है कि शिक्षा कैसे सुधरे, किसानों की आय कैसे बढ़े, बेरोजगारी कैसे घटे, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, यानी कि ये एक सलाहकार संस्था है।

0: और कुमकुम नीति आयोग टीम इंडिया की तरह काम करता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे है कि हर राज्य की ज़रूरत अलग है। राजस्थान की समस्या पानी हो सकती है, तो केरल की समस्या बाढ़। इसलिए नीति आयोग राज्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से रणनीति बनाने में मदद करता है।
1: और हाँ दोस्तों, अगर भारत आज स्टार्टअप नेशन बन रहा है तो इसमें नीति आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नीति आयोग ने ही शुरू किया है अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स। इन लैब्स से बच्चे रोबोटिक्स, एआई, कोडिंग और साइंस एक्सपेरिमेंट्स सीखते हैं।
0: और कुमकुम नीति आयोग ने भारत के पिछड़े जिलों को तेजी से आगे लाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया। कई जिलों में इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला।
1: तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, राज्यों को अधिक भागीदारी देता है, आधुनिक तकनीक और इनोवेशन पर जोर देता है और योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भी करता है।
0: दोस्तों, आप और हम युवा हैं और आप ये तो जानते ही हैं कि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता है, वो स्टार्टअप बनना चाहता है, ऐप डेवलप करना चाहता है, दुनिया बदलने वाला आइडिया देना चाहता है।
1: और निशा, नीति आयोग युवाओं को यही मंच देता है। आज हैकाथॉन्स, इनोवेशन चैलेंजेस, एआई प्रोजेक्ट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स तैयार करना चाहता है।
0: तो दोस्तों, नीति आयोग भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सिर्फ सरकार नहीं, युवाओं, वैज्ञानिकों, किसानों, स्टार्टअप्स और आम नागरिकों को, सभी को साथ चलाना होगा। क्योंकि हर बदलाव पहले एक विचार बनकर जन्म लेता है और फिर वही विचार उम्मीद बनता है और फिर धीरे धीरे ऐसे सपने में बदल जाता है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता।
1: और जब किसी युवा के अंदर देश को आगे बढ़ाने का जुनून जागता है तब उसके मन में बसता है एक बावला सा सपना।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कुमकुम, हमने अभी बात की पादप स्वास्थ्य दिवस की। अगर पौधे स्वस्थ होंगे तभी तो इंसान भी स्वस्थ रहेगा। वैसे भी हमारे आसपास ऐसे अनगिनत पौधे हैं जो सिर्फ हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि वो स्वास्थ्य का खजाना भी हैं। तुलसी की खुशबू, नीम की ठंडी छांव या फिर पुदीने की ताजगी, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने इंसान की ज़रूरतों को इंतज़ाम बहुत पहले से ही कर रखा है।
3: और निशा, मज़ेदार बात यह है कि आज जिस चीज़ को बड़े बड़े ब्रांड्स हर्बल, नेचुरल और ऑर्गेनिक लिखकर चमकदार पैकेट में बेच रहे हैं, वो कभी हमारे घर के आंगन में बिल्कुल मुफ्त में उगा करती थी। दादी के पास कोई मेडिकल डिग्री तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी घर में कौन सी पत्ती किस काम आएगी इसका पूरा ज्ञान होता था। किसी को खांसी हुई नहीं कि तुलसी और अदरक हाजिर, चोट लगी नहीं कि हल्दी तैयार।
2: ये बात तो है कुमकुम, और वैसे भी आजकल तो सभी लोग हल्का सा सिर दर्द हुआ तो गोली, हल्की खांसी हुई तो सिरप, ये सब लेने लगते हैं। और एक हमारा दादा दादी का समय था, घर का आंगन ही आधा अस्पताल हुआ करता था। तुलसी की पत्तियाँ, अदरक, गिलोय, नीम, अश्वगंधा, एलोवेरा, ये सिर्फ पौधे नहीं थे बल्कि जीवन शैली का हिस्सा थी।
3: बिल्कुल, और अक्सर लोग पौधे इसलिए लगाते हैं अभी भी कि घर सुंदर लगे, लेकिन औषधीय पौधे सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता भी देते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर घर में तुलसी हो तो मौसम बदलते समय सर्दी जुखाम से राहत मिल सकती है। अगर एलोवेरा हो तो त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, और अगर पुदीना हो तो गर्मियों में ठंडक और पाचन दोनों मिल जाते हैं।
2: दोस्तों, कई औषधीय पौधे हैं जो हम सभी को अपने घरों में लगाने चाहिए, जैसे कि तुलसी, जिसको हमारे भारत में पवित्र माना जाता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है।
3: तुलसी की पत्तियों में प्राकृतिक गुण होते हैं जो सर्दी जुखाम और गले की तकलीफ में आराम दे सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तुलसी मच्छरों को भी दूर रखने में मदद करती है, यानी कि एक पौधा और फायदे अनेक।
2: कोविड का टाइम तो किसको याद नहीं है कुमकुम। और हाँ दोस्तों, नीम को कैसे भूल सकते हैं हम। नीम का स्वाद भले कड़वा हो लेकिन इसके फायदे मीठे हैं। नीम को प्राकृतिक एंटीसेप्टिक माना जाता है। गाँवों में लोग आज भी नीम की दातुन करते हैं। इसकी पत्तियां कीड़ों को दूर रखने में मदद करती हैं।
3: और निशा, अभी वैसे भी लोग फिर से प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रहे हैं। जैविक खेती,

0: आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में औषधीय पौधे लगाना सिर्फ शौक नहीं बल्कि समझदारी है।
1: और जब यही हरियाली हमारे दिन की थकान को सुकून दे, तो ऐसा लगता है मानो मौसम खुद कोई अनकही धुन गुनगुना रहा हो हवाओं के साथ।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए जानते हैं उनके जवाब। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब है
1: तेलंगाना।
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका सही जवाब है
1: बेंगलुरु।
0: दोस्तों, संघर्ष की तपिश में ही सफलता का सोना निखरता है। जो मेहनत से कभी नहीं घबराता, वही अपने भविष्य को संवारता है। और आपके भविष्य को संवारने के लिए हम हर दिन लाते हैं आपके लिए रोजगार सूचना। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कांस्टेबल, तकनीकी, ट्रेड्समैन और पायनियर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष और पद के अनुसार अधिकतम आयु 23 से 27 वर्ष तय की गई है।
1: इच्छुक उम्मीदवार RECT.CRPF.GOV.IN पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। साइट का नाम एक बार फिर दोहरा देती हूँ, RECT.CRPF.GOV.IN।
0: चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी मित्र निशा शर्मा को
1: और अपनी मित्र कुमकुम स्वामी को।
0: नमस्कार।

ये था युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनते हैं जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। श्रोता सुनेंगे चर्चा, कपास की बुआई उन्नत किस्में, खेत में लगाएं औषधीय पेड़ पौधे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लू एवं ताप घात से बचाव, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00।

लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। हमारी सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर एक ही संगीतकार कार्यक्रम में रात्रि 8:00 फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 फिल्म संगीत और रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम।

ये था हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म काली घटा के इस गीत के साथ, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं एक ही संगीत का कार्यक्रम और आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए सुनिए अपनापन फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

यह है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था अर्पण, गायक कलाकार लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी। और अब सुनिए फिल्म सरगम से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: फिल्म का नाम तेरी मांग सितारों से भर दूंगा। एक कलाकार सुरेश वाडकर, गीतकार आनंद बख्शी और ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर 6:30 बज रहे हैं। अब जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू

0: एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
1: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेंगे। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करें।
0: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा जो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोडमैप तैयार।

0: करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलुम्बर जिले के ओडा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहाँ लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी जिलों में भीषण लू का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के

इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट प्लांट के रूप में मूंग, अरहर, हेज, करंज और मेहंदी के पौधे काम में लिए जा सकते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एलईडी वैन के माध्यम से रात्रि चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जिले के सज्जनगढ़, पीपलखूट, मोरवानिया, टामटिया, नालचौकी और सागबारी सहित कई स्थानों पर रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को उम्बाड़ा गांव में मौके पर ही लाभ दिया गया। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। ग्राम रथ अभियान में कलाकारों के जत्थे प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने बताया कि ये अभियान मिशन मोड पर संचालित हो रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर HPV टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा के डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचा कोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली

0: नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी ची। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूलां माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बढ़कर 54,000 टन रोजीना फियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA पेपर लीक वेवन री शंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। NTA री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान राखता थका करी जियो है। NTA रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जांच सारू मामलो CBI ने सौंपण रो फैसलो कीनो है। NTA परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान बेगोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी और मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माए बदलाव नी फैला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी फैला। NTA रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि पूरो पेपर लीक नी भियो पर कुछ सवाल लीक भया। वह कहो कि परीक्षा री प्रक्रिया माए चूक री ठा करण सारू CBI ने जांच दीरी जी है।
2: तो CBI को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु CBI को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और CBI वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेंगे। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
1: इन बीच SI भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न उजू ली जावेला। इनमाए पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 3,83,000 उम्मीदवार शामिल फै सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इन सारू अर्जियां माए जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी वेवन री सूरत माए मोबाइल नंबर, ईमेल और पता री जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान माए भणाई लिखाई रा मौजूदा हालात री सराहना करता थका एकीकृत शिक्षा

0: सारा हलका माय राज्यन देश माय अव्वल बतायो है। आयोग कानून जारी रपट मुजब राज्य पहली बारहवीं कक्षा ताई रे समय के शिक्षा मुहैया करावन रे मामला माय देश भर माय अव्वल है। रपट मुजब देश रे कुल एकीकृत स्कूलों माय राजस्थान रे हिस्सेदारी करीब 35% है। देश माय पहले बारहवीं कक्षा ताई रे तालीम देवन वाली हर तीजी स्कूल राज्य माय चाल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,889 स्कूल माए प्राइमरी उ सीनियर सेकेंडरी ताई रे शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश की सगले सरकारी और गैर सरकारी स्कूल माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण रे बारा माए नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहतारी पीठ कहो कि नवी शिक्षा नीति 2020 रा तहत मायड़ बोली या भाषा आधारित भणाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माए पढ़ाई जा रही है तो इनने स्कूला माए पढ़ावण ने स्वीकार करण माथे कोई सवाल ही नहीं होवणो चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुकम देता थका कहो कि इनने शुरुआती लेवल माथे भणाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावन रे बारा माए विचार करो जावणो चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थान रा जानकारां री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पतालां रो दौरो करेला। टीम आ अस्पताल माए ऑपरेशन थिएटर माए लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारा माए जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माए चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटा रा सरकारी अस्पताल माए लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइया री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा एड़ा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुकम दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पतालां रो दौरो कैरर व्यवस्था माए जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त रे सदारत माए खास समिति बनावन बाबती कहो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मध्य पूर्व माए चाल रही तनातनी बीच भारत देश माए रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिनारा लेवल नु बधार 54,000 टन कर दिनो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली माए सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 माए आ जानकारी दीनी। व कहो कई देशों ने लारला कुछ महीना माए कीमता माए बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनु पड़ियो जदके भारत घरेलू मूल माए थरता राखण माए कामयाब रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचारा माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वे आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय माए अहलकारा सागे मीटिंग माए बोल रहा है। ई मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय माए विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपया। वह विश्वविद्यालय परिसर माए करीब 10 करोड़ रुपए रा खर्च बनाई जा स्वास्थ्य केंद्र छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन कीनो। वठे अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने असरदार तरीका लागू करण बाबत कहो। राज्य सरकार कानू जनता रा भला सारू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वारी जानकारी जनता ताई पूगावण सारू ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इना तेत सलूम्बर जिला रा ओडा और अदवास समेत कई गांव माए कार्यक्रम राखी जा जठे लोक कलाकार योजना वारी जानकारी गीता और नुक्कड़ नाटका रे जरिए आसान भाषा माए दीनी। बाड़मेर जिला में आई ई अभियान सारू खास उमाव नजर आ रियो है। और ब्यूरो महाना खबर नवीसू।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: जोधपुर रो 568वां स्थापना दिवस आज हरा कुमाऊं सागे मनाइचियो। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में राखी जिया खास जलसा माए न्यारा न्यारा हलका माए चोखो काम करन वाला 19 जना ने मारवाड़ रत्नू नवाजी चिया। इनु पहले मेहरानगढ़ अर जसवंत थड़ा माए शहीदा ने फूल चढ़ार सिरथा भाव सागे याद करी चिया। ये मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी। ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 माए जोधपुर बसायो हो। अरब मौसम, प्रदेश माए पाकिस्तान री सरहदू लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है। आज बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। जैसलमेर और बालोतरा माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो। इन अलावा बीकानेर और जोधपुर माए लू बाज रही है। कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ माए पड़ रहा जोरदार तावड़ाऊ जिंदगी माथे असर पड़ रो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हलका माए लू रो दौर आवता 3-4 दिन ताई चाल तो रहवन रा आसार है।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
1: इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हलका माए आज भी बिरखाऊ गर्मी थोड़ी साता मिली। भरतपुर माए दोपहर पाछे बरसात हुई। धौलपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला माए अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो। नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला माए ओ दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा माए 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा। प्रदेश में आई नर्स दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जिया। झुंझुनूरा बीडीके अस्पताल में चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो। इ मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियां री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी।
3: आज जो हमारे नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने, सफल बने और इस अवसर पर नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया माए चाल रही तनातनी बीच भारत माए घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदू लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात। बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाले सगले किसान भाई और श्रोताओं ने आपरे साथी दीवान दान रत्नू
1: और बजरंग सारस्वतरा
0: घणान घणा
1: राम राम। दीवान भाई, गर्मी पड़े है मोकड़ी आज, दिन में तावड़ियो तेज पड़ियो और आथन पड़ता पड़ता अबे में की है जी की यहाँ आंधी रासा लक्षण दिखिया और की थोड़ी ठंड बापरी पण जी की बढ़ती है। बा सिंजा पड़ गई है या रात ओनाड़ी है, फिर भी बा जी की ताती हवा है, बा सीधी चुभ रही है आपारे शरीर ने।
0: देखो सा, अब गर्मी रा, देखो बजरंग भाई, गर्मी रा दिन है और इन जेठ भी लाग गयो, तो इन बगत अपन ने तो यही कहनो है सा किसान भाई ने कि ध्यान रखो और गर्मी रे बचाव रखो और खेती बाड़ी रो काम काज करो तो सावचेतियों करो। सुबह सुबह भूखे पेट नहीं जानो बजरंग भाई, साथे गाबू भी रखो और कई छोटी छोटी चीजें हैं अपन किसान भाई ने ध्यान रखनो पड़े।
1: पर अबार अपन ने ध्यान रखनो है इन दिन रमाई ने कपास री बुआई अपा चावा तो इन दिन में कर सका। उन्नत किस्मा है भी बारे में भी आप चर्चा करा दीवान भाई तो बहुत ही उपयुक्त तो रहसी के जिया के कपास री बुआई जो सीजन है वो अबार परवान माथे है। अपारे क्षेत्र में किसान भाई इन्हें सफेद सोनो केवे है और आज आप चाहवा के अपार किसान भाई ने उन्नत किस्मा है, तरीका है बीर बारे में आप बतावा ताकि बारी मेहनत जिकी है बस सफल होवे, पैदावार भरपूर मिले। अपारे बीकानेर क्षेत्र जिको गंगानगर हनुमानगढ़ जिको सीमा मिलतो क्षेत्र है, खाजुआड़ा है, इरे आगे रो क्षेत्र है, अठे कपास री बुआई जिकी है बा एक मोटे तौर पर होया करे है। अपारे इन क्षेत्र में थोड़ी कम है, शहरी क्षेत्र का नहीं कम है, पर जटे कटे भी हो रही है इरी खेती, अपारी आवाज पूग रही है बा सब किसान भाया सारू दीवान भाई की आप जानकारी बताओ तो की हिये रो हिये में चानण होवे।
0: बिल्कुल बजरंग भाई, के कपास री बुआई रो सीजन अब परवान माथे है तो अपा इन कपास ने अपारे अठे सफ़ेद सोनो भी कहो जावे है और किसानों वास्ते उन्नत किस्मा ने चयन करनो जरूरी है। यदि अपा उन्नत किस्मा रो चयन करा ला तो ही अपा ने बढ़िया कपास उपलब्ध होएला।
1: दीवान भाई, कपास री खेती मायने सबसे पहली और जरूरी बात है सही बीज रो चुनाव और बुआई रो समय। तो दीवान भाई, अपारे राजस्थान रा नैदिक क्षेत्र जको है जिया के गंगानगर हनुमानगढ़ और थोड़ो की बीकानेर क्षेत्र है, तो अठे मई रो जिको ओ पखवाड़ो है ओ बुआई सारू सबसे उत्तम है, सबसे अच्छो है। जीती बेगी आपा बुआई कराला तो अपारी फसल गुलाबी सुंडी जड़ी जिकी बीमारियां है, कीट है बारे प्रकोप सु सुरक्षित रेवेला और फसल ने कोई बांतरो खतरो नहीं होवेला।
0: बिल्कुल बढ़िया है के बजरंग भाई, आपा अठे किसान भाई जगह हाईब्रिड बीटी कपास है बिने ज़्यादा प्राथमिक देवा हाँ और भरोसेमंद भी हुए है और किस्मा रे माया राशि 650-773 ज़्यादा पैदावार देखने मिले है। इनके अलावा US 475 अंकुर 3028 RG 8 RG 18 ए भी किस्मा है जिकी कम पानी में हुए है जिके ने अपा अठे मौको दे वहाँ।
1: और एज की किस्मा है ए रस चूसनाड़ा कीट है बारे प्रति भी घनी प्रतिरोधी है, यानी कि रस चूसनाड़ा कीट भी लागे कौन। तो सागे सागे अपन वो भी ध्यान रखना है के जिकी बुआई री तकनीक है पौधे सु पौधे री दूरी है और गहराई है भी बारे में आप चर्चा करा। बीज ने उचित गहराई माथे बोनो चाहिए, कतारा रे बीच जिकी सही दूरी है वह बनाई रखनी जरूरी है। कतार सु कतारी दूरी कम से कम 67.5 सेंटीमीटर सुलेर 100 सेंटीमीटर तय होनी चाहिए। सागे ही किसान भाई बुआई सु पहली प्रति एकड़ 8-10 ट्रोली चोखी सड़ोड़ी गोबरी खाद जकी है बा बीर मायने जरूर जरूर डालनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और बजरंग भाई
1: ऐसा बातार वापा ध्यान रखा
0: हाँ,
1: तो अपार क्षेत्र मायने अच्छी जिकी उपज है बा हो सके है, कपास रो चोखो उत्पादन हो सके, आपारी जेबा जिकी है बे हरी भरी रह सके।
0: अब देखो बजरंग भाई, बात कराला और भी वो घनी जोरदार चोखी चोखी बात है अपारे खने, तो पहला आपा सुना बिड़ते मोर्चे कालूराम प्रजापित गावड़ो ओ कीतड़ लो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015

0: 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: वासा दीवान जी, संदेशा सुनिया और संदेशाओं के लिए अच्छो सो की सुनाए हो आप जीरे आड़ो ओ जीरो जीरो बेरी रे मती बाऊ मरा परन्या
4: जीरो और जे जीरो बाऊ तो परन्या घर में राखो धीणो। कुल मिलार धीणेरी आज भी जरूरत है, क्योंकि जिकी जितो आपा घर में धीणो राखाला बीतो ही अपारे घर रह सकना रो स्वास्थ्य बढ़िया रहेला। क्यों घर में धीणो वेला तो राबड़ी छाछ हुए और राबड़ी छाछ वेला तो शरीर ने ठंडी तासीर मिले
3: और शरीर में आपा जी की मेहनत करा, खेती बाड़ी में मेहनत करा तो बीर जी की शरीर है वो रिचार्ज हो जावे, आपा ने शरीर ने ताकत मिले। और दीवान भाई, शरीर ने आप ताकत मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुए जब आपा औषधीय पेड़ पौधा है वे भी आप आसे पासे लगावा, आप खेत में लगावा, बाड़े में लगावा, बीहू भी आप शरीर है वो ठीक रहे, शरीर ने बीमारियां से लड़ने री चोखी शक्ति मिले।
4: मिले बिल्कुल, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया वे और यदि अपारो शरीर स्वस्थ रहे ही और शरीर ने स्वस्थ राखन खातर आप कहो कि अपारे आसे पासी औषधीय पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा घना महता हुए, लेकिन पेड़ पौधा में ही यदि औषधीय पेड़ पौधा लगावा, किसान प्रगतिशील किसान आज रे भगत में यदि औषधीय पेड़ पौधा लगावा तो बीरी कई बात कहनी, क्योंकि आजकल बीकानेर क्षेत्र में भी औषधीय पेड़ पौधा लागण लाग गया है और कई प्रगतिशील किसान है बढ़िया फार्म बियारा चल रहा है।
3: दीवान भाई, ए जका औषधीय पेड़ पौधा है ए कम पानी में पनप जावे, जिका आवारा पशु है या घुमंतु पशु है वे भी इन्हें खावे को नहीं, बाजार में यारी मोकड़ी मांग है और किसान भया सरु ये गणा फायदेमंद है। जी हाँ, बात करा आपारी आज की धुरा धरती है बीकानेर क्षेत्र है, अठे ग्वार पाठो है तो ईरी ईरो जो को उत्पादन है वो आपा चोखो ले सका हाँ। ई सब गुड़ है, सहजन है, नीम है और भी भात भातरा जी का पेड़ पौधा है वे आपा अठे बारी व्यावसायिक खेती कर सका, बारो आपा बिक्री कर सका और मुनाफो ले सका।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और आजकल बजरंग भाई इन पौधे में जो महंगी खाद री जरूरत नहीं पड़े है, बिल्कुल बजरंग भाई, और गोबर री खाद अपा उपयोग में ले सका हाँ, रासायनिक दवा री जरूरत नहीं पड़े है और खेती री लागत भी बहुत कम हुए।
3: और कोई भाई पूछे कि भाई फसल ने बेचा कठे, तो बीरो बात है कि आजकल मोकड़ी कंपनियां एड़ी वापर गई है जो कि सीधी खेता सु माल खरीदे है, आयुर्वेदिक मंडियां हैं बठे भी आने बेचो जा सके, बस बीज जका है बेचो की गुणवत्ता रा चोखी क्वालिटी रा इस्तेमाल अपने करना चाहिए।
4: और इन खातर छोटे किसानों ने मेड़ा लगा, छोटा अपा पौधा लगावा, फसल उगावा, फसल उत्पादन करा, खाली पड़ी है जिकी जमीन है बठे भी है सही तरीके को अपा औषधीय पौधा लगा सका।
3: तो दीवान भाई बहुत ही बढ़िया आप जानकारी दी औषधीय पेड़ पौधा पर, आपा जिया के मिश्रित खेती करा, आपा मिलवा खेती करा या औषधीय पेड़ पौधा की खेती करा भी आपा आपारी आमदनी ने बढ़ा सका, पशुपालन कर भी आप अतिरिक्त

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं।

0: और इरमया देखो, एक बढ़िया सी बात आ है कि इरमया गोकुल ग्राम भी बनायो जावे है, जटे देसी नस्ला रो संरक्षण मिल सके, किसाना ने अच्छू अच्छी देसी नस्ल आसानी उपलब्ध हो सके।
1: सागी देखो आप पशु जब साझाता जा रहेला तंदुरुस्त रहेला तो नस्ल जकी है बचोखी होवेला, किसान भाई री आमदनी बढ़ेला, दूध रे सागे सागे दूध और दही रा दाम भी मिलेला। जिया क्या करता नहीं कि दूध दही री नदियाँ बेवे है,
0: नदियाँ में
1: बिया
0: वे
1: मोकड़ो घर में दूध दही होवेला के अब रखे तो किन ठोड़ रखे। तो भाई बापेली वाली बात होवेला, तो अपने ए जका देसी नस्ल रा पशु है गाया है आने राखनी है, नस्ल सुधारनी है और इन मिशन रो फायदो आपने जरूर उठाना है। नजदीक में जिको भी पशु चिकित्सालय है
0: बैठे
1: बटे
0: हुआ बा।
1: आपने आज ही संपर्क करना है।
0: हाँ, और इमें सरकार सहायता भी करे है, सरकार सब्सिडी भी देवे है, सरकार मोकड़ो फायदो इनमें अपन अपन वास्ते बिनवड़ी है। इन खातर छोटी छोटी इन योजनाओं अपन जुड़ा और इन योजना रो फायदो लेवा। अब देखो बजरंग भाई, बातचीत तो और भी वेला, तो अब सुना अपा एक बढ़िया रामदेव बाबे रो हरजस।
1: सुनाओ सर।

0: देखो सा कार्यक्रम वक्त पूरो हो रही है तो पूरो गीत नहीं सुना सका, काले कार्यक्रम में और सुना वाला आपा और देव सीख आपे साथी दीवान दान दत्नु ने
1: और बजरंग सारस्वत ने घना घना
0: राम राम सा।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जसकरण मारू के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

ये भक्ति गीत था जयंती हीरावत की आवाज़ में, और अब सुनिए कुमार गंधर्व को इस पारंपरिक भक्ति गीत में।

लक्ष्मी शंकर के गाए मीरा भाई द्वारा रचे इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है आवारा बादल, गए कलाकार मुकेश

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना, गीतकार असद भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए सुनिए आलाप फिल्म से येसुदास को।

फिल्म का नाम भाभी, गायिका लता मंगेशकर, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत चित्रगुप्त का। और अब सुनिए फिल्म उपकार से मुकेश को, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

ये था शैलेंद्र का गीत शंकर जयकिशन की संगीत धुनों में सजा, फिल्म का नाम कालीघटा और गायिका लता मंगेशकर। लीजिए सुनिए हेरा फेरी फिल्म से लता जी की आवाज़ में ये गीत।

0: उसकी तकदीर का उन्वान बदल जाएगा।
1: फिल्म का नाम काजल, गायक महेंद्र कपूर, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए ये गज़ल जिसे गाया है मिताली सिंह ने।

तो इस गज़ल को गाने वाले कलाकार थे युगांतर सिंदूर। और अब सुनिए चित्रा सिंह की गाई ये गज़ल।

हरिहरन की गई मुनव्वर राणे की लिखी इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद फरमाइशी पत्रों पर आधारित।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। इसे गाया है आशा भोंसले ने, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार हेमंत कुमार।

इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल आभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री, लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाब की, रनवर अली, मुमताज़, सोनू, टीना, वहीदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पंवार, खातून बेगम, शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, अमर सिंहपुरा बीकानेर से मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो, मोहम्मद कैफ और परिवारजन, मोहम्मद सरबास, श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पंवार, अकबर, राबिया, मुन्नी, बरकत हजन, अजीज, गुलजार और असगर, साथ ही इनके परिवारजन। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मुगले आजम से है। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार हैं खयाम। और इस गीत को फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राष्ट्रीय और गौरव शाही, पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, प्रेमी गीता रानी, राज मनोहर लाल, बीएल सोनगरा, सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज कृष्णा, मुकेश सोनगरा, साथ ही सावित्री मिस्त्री, सीताराम पंवार, दीफू पंवार, आशीष जतिन सोनगरा और इनके साथी, वल्लभ गार्डन बीकानेर से एल सी शहजादा, कमला देवी पंवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक अनन्या, सत्यनारायण पंवार और इनके साथी। इसी गीत को फरमाइश की ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे और इनके परिवारजन। और रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब, बिट्टू झांब, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं इस गीत को।

गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, फिल्म का नाम 100 साल बाद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं, बीकानेर से रमजान अली लखारा और इनके साथी, कोहरियान मोल्ला बीकानेर से इकरमुद्दीन कोहरी और इनके परिवारजन, विनोबा बस्ती बीकानेर से हरीश कुमार सियोता इनके परिवारजन और साथी, चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल और इनके परिवारजन, देशनोक बीकानेर से गोपाल दान, प्रकाश दान, भूम दान और इनके साथी, श्रीकोलैत से फूसराज सोनी इनके परिवारजन, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत, बेनीवाल और सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान और इनके साथी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं कोलपोल उदयपुर से गोपाल कांता नैनवाया, गोपाल तिलक सक्षम तंबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम जगदीश मोदी, गोविंदगढ़ श्री करणपुर से राजू खुशदिल, उर्मिला गुड्डू, जीनू मनु, आदित्य भूमि, राखी अमृत, शिव सेठी, इस्माइल टुटेजा, अरैयावाला हनुमानगढ़ से कालू खान दमामी और इनके परिवारजन, बाड़मेर से बबलेश डैनी और मनीष पंवार, बाड़मेर से ही खुदा बख्श बच्चू खां और मोमिन खलीफा, चौमेला राजस्थान से कैलाश चंद गर्ग और इनके परिवारजन, हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां और इनके साथी, तापू जोधपुर से विष्णाराम बालियान और इनके परिवारजन। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मिस्टर एंड मिसेज 55 फिल्म का गीता दत्त का गाया मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर।

अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं: रटलाई झालावाड़ से प्रभुलाल मनोहर बाई और बागरी परिवार, फ्रांसी से राजकुमार सरजीत सिंह, प्रमोद डूडी, डबवाली से राजेंद्र अंजू और मोहित नारंग, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल अंकित, साहिल कांगड़ा, हांसी शहर से राजू, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारणी, सूरज ज्योति, रेयांश, गुड़िया ठाकुर, बाबा कुटी उफरा से प्रेम, यमुना, तुलसी, हेमलता साहू, पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश भट्टा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल दिया दर्द लिया से। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। इस गीत को सुनना चाहते हैं भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जेएस नायक, शोभा और डागला परिवार, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महाराज जहां, बोड़ खेड़ा उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन दीक्षा, कुश मुनत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी और इनके साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं और आप भी सुनिए।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म का नाम मनमौजी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। इस गीत को सुनना चाहते थे दतरंगी से भागवत वर्मा और इनके साथी, सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश नूर मोहम्मद, इरफान कासिफ, हासिम मीना, डबवाली से राजेंद्र अंजू और इनके साथी, डबवाली से ही बसंत सिंह, चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, डबवाली से जेके बाकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बाकोलिया, प्रमीलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश, ऋषि वर्मा, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरव शर्मा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के हैं नाम, मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सत्यनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना, इसी शहर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप बेबी, आरजू जाजोरिया, मलोट पंजाब से ही राजीव, रजनी, आरती, तनिष से

नित्या सतीश सीमा शाइना विशाल सुपरिया अनमोल धर्मपाल रमेश मिगलानी। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या। भिलाई से मुकेश सरिता गौरव और गरिमा शर्मा। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म काजल से मोहम्मद रफ़ी को। बोल साहिर लुधियानवी की ओर संगीत रवि का।

फिल्म का नाम आम्रपाली, गायक कलाकार लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन, पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित आर्य, शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश, शिव सागर, इंदिराबाई सुनैना, खोबरखेड़े, जलगांव से राम, दीपाली और स्वराज धाड़े, अमरावती से सुनैना, पावन भोड़े और रिंगनी से दिनेश, करुणा वर्मा, इनके साथी और परिवारजन। अगला गीत सुनने के लिए पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं फाजिलका पंजाब से भूषण, विशु विशाल, टिवांशी, शालिनी, आरवी, लाडी, जीवन सिंह बुक, खेड़ा परिवार, भड़भूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय और इनके परिवारजन, रोपड़ पंजाब से मीका, बलविंद्र, जयतेग, वीरक और हरदेव मीका, लुधियाना से विनोदपुरी और इनके परिवारजन, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, भिवानी से कृष्ण मेहरा, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं बहु बेगम फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रोशन।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अमरदीप, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत सी रामचंद्र का। इस गीत को सुनना चाहते थे मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ और इनके साथी, इंदौर से जगदीश चौहान और इनके साथी और परिवारजन, मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब नावेद खान, मोहम्मद फरीद अंसारी, जफर हुसैन और इनके परिवारजन, नाहन हिमाचल प्रदेश से रज्जाक मोहम्मद और इनके परिवारजन, हरिपुरा झज्जर से प्रतीप वधवा और इनके साथी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं अहमदाबाद से भालचंद्र वड़गी और इनके साथी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर और इनके परिवारजन, मधुबनी बिहार से हेमलता सज्जन और इनके परिवारजन, भाटापारा से प्रमोद साहू, इनके परिवारजन और साथी, जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, इनके परिवारजन और साथी, फिल्म अमन से ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी को, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।

फिल्म का नाम नूर जहां, गायिका आशा भोंसले, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रोशन। इस गीत को सुनना चाहते थे जलालाबाद से सुरेश गगनेजा और इनके परिवारजन, भाटापारा से प्रमोद साहू और इनके परिवारजन, मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गंवहाकर और इनके परिवारजन, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गंवहाकर और इनके साथी और परिवारजन, भिलाई से प्रताप पांडे और इनके परिवारजन, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर संतोष शर्मा और इनके साथी और परिवारजन, नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनके परिवारजन। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहते हैं बोडूसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू और इनके साथी, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गंवहाकर, ध्वनि गंवहाकर और इनके साथी, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी इनके साथी, पीलीबंगा से अमन मेहरा और इनके साथी, बठिंडा से अशोक ग्रोवर और इनके साथी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये और इनके साथी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी और इनके साथी और परिवारजन, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल बेनीवाल और इनके साथी और परिवारजन, सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े और इनके साथी, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय और इनके साथी और परिवारजन। ये सभी सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम है जिंदगी और मौत। गायक कलाकार महेंद्र कपूर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बज रहे हैं। आप श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार

0: से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, 4 MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic